0: प्रपोज किया वो नहीं लेके उससे
1: जी,
0: प्रपोज
1: और
0: करके।
1: ओवरहेड जो एक्सपेंसेस है वो लेके छोड़ दिया जा
0: यस
1: सकता है,
0: यस
1: बाकी
0: यस
1: जैसे आपकी दवाइयों के और जो खर्चे हुए हैं वो
0: वो
1: आप कोशिश
0: यस
1: करके।
0: जो कंज्यूमेबल्स वगैरह है उनके अपन खर्चे ले सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों को निगोशिएट करके इस कॉन्फ्लेंस को, इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको टाला जा सकता है।
1: जी
0: क्योंकि पेशेंट जब किसी की डेथ होती है तो वो वैसे भी एगोनी में होते हैं, ट्रॉमा में होते हैं।
1: और वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाइपर उस स्थिति में भी
0: यस
1: होते हैं, और उसके बाद में प्रशासन जो है वो दुखद स्थितियां बनती है कि बॉडी ले जाने की
0: जी
1: जब नौबत आती है तब बिल के कारण जो है वो मतलब ऐसी एक संवादहीनता की स्थिति आती है
0: जी
1: जिसमें
0: जी
1: दोनों तरफ से, तो ये एक ऐसा डेवलप किया जा सकता है। कई बार आपकी जैसे पार्टीज वगैरह होती हैं या जब आप किसी सोशल फंक्शन में मिलते हैं तो आप सभी जो हॉस्पिटल के संचालक हैं उन मिलना होता है आपका,
0: जी सर मिलना होता है।
1: और इस तरह की चर्चाएं भी होती हैं कि आजकल ये चल रहा है वो चल रहा है।
0: हाँ चर्चा होती है सर, बिल्कुल होती है। इसमें कई लोगों के डिफरेंट तरह के मत होते हैं सर।
1: जी बिल्कुल।
0: कई डॉक्टर्स कहते हैं कि पूरा पेशेंट पैसा लेना चाहिए, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि चलो ठीक है जो इनका एक्सपेंसेस अभी तक हुआ वो ले लो।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सन सिटी ओपन शो प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आज विशेष मेहमान हैं डॉक्टर अक्षय कुमार सोलंकी। जानते ही हैं आप, एक निजी चिकित्सालय के आप संस्थापक संचालक हैं, और ये जो आइडिया आपके मन में आया था वो 2009 में फलीभूत हुआ। शुरू में हॉस्पिटल छोटा था सर, उसके बाद में आप इसमें मल्टी स्पेशलिटी इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर पाए,
1: लोग जुड़ते गए हमारे साथ में सर, और स्पेशलिटी और यस कारवा बढ़ता गया।
0: हाँ।
1: तो आज हमारे पास सभी स्पेशलिटी हैं, ऑर्थोपेडिक्स भी है, जनरल सर्जरी भी है, यूरोलॉजी भी है, गायनी भी है, स्किन भी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी है, सारी है।
0: तो जैसे जिस इलाके में आपने हॉस्पिटल खोला उस इलाके में लोगों का जो आर्थिक स्तर था वो भी आपने देखा होगा, कई इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कई बार पे करने की स्थिति में नहीं होते, तो वो भी चीज आपने फैक्टर इन की उस वक्त ध्यान में थी, भाई ऐसा भी हो सकता है कि
1: बिल्कुल हो सकता
0: फ्री
1: है।
0: में इलाज करना पड़े, और आज भी करते होंगे आप?
1: बिल्कुल सर, अभी भी करते हैं, फ्री में भी करते हैं। जो पेशेंट कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, कम पैसे लगे, इलाज तो आपसे ही कराना है, तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा।
0: सर क्या हुआ था, जब पिछली गवर्नमेंट ने ये एक कानून बनाने की कोशिश की थी जिसमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल डिनाई नहीं कर सकता
1: जी,
0: तो जब मोस्ट ऑफ दी हॉस्पिटल्स की यही मानसिकता रहती है, यही उनका एक तरह से बेंचमार्क सोच है कि मरीज को जो है वो इलाज मिलना चाहिए, तो हॉस्पिटल्स ने क्यों विरोध किया था?
1: सर देखिए, ऐसा है कि राइट टू हेल्थ तो सबको होना चाहिए। जैसे मेरा हॉस्पिटल है वहां पे नेशनल हाईवे है सर, तो वहां पे एक्सीडेंट के काफी पेशेंट आते हैं जिनके पास जिनके साथ कोई नहीं होता, तो ये हमारा मानवता का धर्म है कि उस पेशेंट को हम अपने पास से दवाई देते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं, मैनेज करते हैं। उसके बाद में कोई रिलेटिव आया तो हम लोग उसको हायर सेंटर पे भेजते हैं, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता था हमारे यहाँ देते हैं, अदरवाइज हम उसको अपनी एम्बुलेंस से सारे खर्चे से जो हायर सेंटर है वहां रेफर करते हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि जो एक बार हमने इमरजेंसी सर्विस दे दी उसके बाद उसका जो पैकेजेस है वो गवर्नमेंट को देने चाहिए। भाई जो अफोर्ड कर सकता है अगर वो वहां कराता है तो उसके पैकेज देने चाहिए, नहीं कर सकता उसके भी देने चाहिए, लेकिन एक बार तो राइट टू हेल्थ सबका है सर, तो हम किसी पेशेंट को डिनाई नहीं करना चाहिए। उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हमारी हैसियत के हिसाब से प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सब देना चाहिए उसको। कई बार अकेले लोग जाते हैं, उनके साथ होता नहीं है, बाइक से गिर गए, किसी ने टक्कर मार दी, कोई बेहोश हो गया, बुजुर्ग व्यक्ति है, गर्मी से गिर गया, तो हमारे रूल बना रखा हॉस्पिटल में कि उसके लिए हमने फंड बना रखा है, जो भी ड्रग्स आएगी जो भी केयर होगा उसका पेमेंट नहीं लेंगे। कोई रिलेटिव उसका आता है वो देना चाहे तो ही कैन पे, अदरवाइज हम लोग उससे कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो राइट टू हेल्थ तो वैसे भी है ही है सर, ये
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर व्यक्ति का है। अपना सोचे, अपन कहीं जा रहे हैं, अपन का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे अगर कोई सोचेगा तो अपनी केयर कौन करेगा। बेसिक राइट टू हेल्थ है ही है सर ये, लेकिन उसके साथ हम लोगों का क्या है सर कि इतना

0: इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हर एक व्यक्ति को जो इमरजेंसी है उसमें राइट टू हेल्थ होना चाहिए। प्लांट केसेस में राइट टू हेल्थ नहीं, किसी का अगर सरदर्द हुआ वो कह साहब मेरा राइट टू हेल्थ है, मेरा ट्रीटमेंट फ्री करो, ऐसा नहीं है सर। काफी इमरजेंसी ऐसी है जैसे कि डिलीवरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गई, फ्रैक्चर्स हो गए, उनके लिए राइट टू हेल्थ होना ही चाहिए सर।
1: बिल्कुल, तो आपका जो सोच या मत है वो बाकी बहुत सारे आपके जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनसे थोड़ा अलग भी है
0: जी,
1: कि इमरजेंसी में राइट टू हेल्थ होना चाहिए। अगर इमरजेंसी में किसी के पास पैसे नहीं है तो एटलीस्ट उसको स्टेबल करके और फिर हायर सेंटर तक भेजा जाए।
0: बिल्कुल सही
1: होना चाहिए,
0: बिल्कुल सही है सर,
1: बिल्कुल। तो 102.1 FM पर रेडियो सन सिटी ओपन शो प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान डॉक्टर अक्षय कुमार सोलंकी जी, बातचीत जारी रहेगी, एक गाना इनकी पसंद।

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहां कहां इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके, सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सन सिटी ओपन शो प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आज विशेष मेहमान हैं डॉक्टर अक्षय कुमार सोलंकी। जानते ही हैं आप, एक निजी चिकित्सालय के आप संस्थापक संचालक हैं। और सर, हॉस्पिटल स्थापित करने पर मैं बार बार आ रहा हूँ। नागौर में जब आप निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तब भी आप एक जनरल सर्जन के तौर पर आपकी लिमिटेशंस थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। फिर भी आपने कुछ ऐसे नवाचार वहां किए होंगे जो उस वक्त वहां प्रचलन में नहीं थे।
1: जी सर, मैंने जो गुर्दे की पथरी का जो दूरबीन से इलाज होता है नागौर में, सबसे पहले मैंने शुरू किया। अच्छा। उसके लिए जयपुर से डॉक्टर बुलाता था मैं, वो करके जाते थे। फिर दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, यूट्रस का ऑपरेशन सारे हमने शुरू किए। तो ये सारे जो फिर लेजर से पाइल्स फिशर का ये हमने नागौर में शुरू किया। उसके बाद मैं जोधपुर आ गया, तब वहाँ ऑलमोस्ट ऑल हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी है।
0: जी, तो एक तरह से पायनियरिंग

0: फट आपका नागौर में
1: जी,
0: रहा
1: जी सर,
0: जोधपुर
1: जी.
0: में आने के बाद और जोधपुर में आपने अपना हॉस्पिटल स्थापित किया, तो आपकी सेवाएं निरंतर जोधपुर में पेशेंट्स को अभी भी मिल रही हैं एज जनरल सर्जन के तौर पर?
1: जी सर, जी सर.
0: यहां पर आपने क्या क्या नई सेवाएं आपने देने की कोशिश की?
1: सर यहां हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी पूरी करते हैं सर
0: जी.
1: उसके बाद में जो प्रोक्टोलॉजी फील्ड है, जो पाइल्स फिशर फिशुला है, इसमें लेजर से हम लोग अभी शुरू किया है काम करना. इसके अलावा यूरोलॉजी का सर्जरी है सर, तो यूरोलॉजी से लेजर सर्जरी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स है, सीटी स्कैन से, ये हमने अभी शुरू किया है.
0: भविष्य में क्या योजनाएं हैं सर्जरी के क्षेत्र में? जैसे रोबोटिक्स का भी आगमन हो गया है
1: जी,
0: और यूरोलॉजी में स्पेशली ऐसा माना जाता है कि रोबोटिक्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है.
1: जी सर,
0: तो अभी आपके हॉस्पिटल में किसी क्षेत्र में रोबोटिक्स का अभी योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन है या भविष्य में ऐसी योजना है?
1: भविष्य में योजना है. वैसे रोबोटिक्स का जो योगदान है वो कैंसर सर्जरी और डीप पेल्विक सर्जरी में ज्यादा है
0: जी,
1: और वैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी रोबोट का योगदान है, तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट में रोबोट अभी फ्यूचर में हम लाने की सोच रहे हैं.
0: बिल्कुल, हॉस्पिटल को और विस्तार देने की योजनाएं हैं आपकी?
1: कार्डियक कैथ लैब वगैरह है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी सेवाएं भी हम लाने की सोच रहे हैं.
0: तो 102.1 FM पर रेडियो सन सिटी ओपन शो प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान डॉक्टर अक्षय कुमार सोलंकी जी, बातचीत जारी रहेगी. एक गाना इनकी पसंद का,
1: ये नयन डरे डरे.
0: आपके गाने बड़े क्लासिक किस्म के हैं
1: जी,
0: तो आपकी सोच और मिजाज भी कुछ इसी तरह का है. सुनते हैं ये गाना, हमारे दोस्तों को बहुत पसंद आएगा, और फिर लौट करके थोड़ी देर और बातचीत करते हैं.

स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सेंसिटी ओपन शो प्रोग्राम में। आज मंगलवार का दिन, विशेष मेहमान का दिन। विशेष मेहमान के तौर पर आज हमारे साथ में डॉक्टर अक्षय कुमार सोलंकी।

0: आप जाने माने सर्जन हैं और एक निजी हॉस्पिटल के संस्थापक संचालक हैं। इनसे मजेदार बातें हुई है, खास करके इनके प्रोफेशन के बारे में। तो उससे थोड़ा हट करके, एक डॉक्टर भी बहुत सारे शौक हॉबीज रखता है,
1: जी
0: हालांकि समय कम मिलता है, और स्पेशली जब डॉक्टर दंपति दोनों ही एक ही फील्ड में हो तो और ज्यादा समय कम मिलता है और बातचीत के विषय भी बहुत कॉमन होते हैं। तो अब चूंकि स्थितियां थोड़ी सी और तरक्की हो गई कि पूरी फैमिली ही डॉक्टर है, आपके जो बेटे हैं वो भी डॉक्टर हैं,
1: जी
0: तो कैसा लगता है डिनर टेबल पर क्या बातें होती है? वही बातें होती है, मरीज और डॉक्टर
1: नहीं सर,
0: डॉक्टर
1: डिनर
0: अलग
1: टेबल
0: होती
1: पर
0: है?
1: बातें नहीं होती है,
0: जी
1: मरीज और पेशेंट की बातें नहीं होती है। फैमिली रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं सर।
0: जी
1: जो हमारे घर में 3 पेट्स हैं सर,
0: अच्छा
1: तो हम उनके विषय में बात करते हैं, दिन कैसे बीता उसके विषय में बात करते हैं, उनकी हॉबीज, बच्चों की हॉबीज कहाँ हैं, क्या एक्स्ट्रा कुछ काम किया, कार की बातें करते हैं सर, गार्डनिंग मेरे को बहुत शौक है उसकी बातें करते हैं, मूवीज की बातें करते हैं, सॉन्ग्स की बातें करते हैं।
0: वाह क्या बात है। यानी अपने पेशे को आप हॉस्पिटल तक रखते हैं और घर में भी डिस्कस करते होंगे कुछ क्रूशियल मोमेंट्स पे, लेकिन डिनर पर कोशिश करते हैं कि घर परिवार की ही
1: यस
0: बातें।
1: जी, घर
0: तो
1: परिवार।
0: आपके बेटे भी डॉक्टर हैं, अब पिता और पुत्र के जो संबंध है वो किस तरह के हैं? पहले तो पिता पुत्र की तरह होते हैं, लेकिन बाद में फिर दोस्त ज्यादा होते हैं
1: जी
0: जब
1: जी
0: जूता जो है वो एक ही साइज का हो जाए।
1: जी सर, जी
0: तो आपके दोनों बेटों के जूते आपकी साइज के हो गए हैं?
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: हो गए
1: मेरे क्लोथ्स भी
0: अच्छा
1: उनके साइज के हैं, तो जो
0: अच्छा
1: मेरे न्यू क्लोथ्स आते हैं मुझे मिलते नहीं है,
0: अच्छा
1: लेकिन जब वो मेरे न्यू क्लोथ्स लेके पहनते, तो उसको मुझे पहनने से ज्यादा उनको पहनना ज्यादा अच्छा लगता, उनको पहनते देखना ज्यादा अच्छा लगता है।
0: आपको ऐसा लगता होगा कहीं ना कहीं कि आपका ही एक तरह से कुछ साल पहले का रीइंकार्नेशन या वर्जन हो गया है।
1: जी
0: लेकिन एक चीज है कि क्या आप ये मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो संतान है,
1: जी
0: वो क्या पिता की ही मिनिएचर साइज हम कहेंगे या पिता का ही वर्जन कहेंगे या उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है? आप क्या मानते हैं?
1: नहीं, स्वतंत्र व्यक्तित्व तो होता ही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं छवि उनकी पिता की होती है। जो
0: बिल्कुल
1: पिता की बेसिक नेचर होता है, जो पिता का बेसिक रूप होता है, उसको वो कहीं ना कहीं फॉलो करता है, लेकिन वो उसको मानते नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर वो मुझे दिखता है, या आपको भी अपने बच्चों में दिखेगा, कि कुछ ना कहीं मेरे को फॉलो कर रहा है।
0: बिल्कुल होता है। एक चीज है सर कि जैसे पहले फॉलो करने की बातें ज्यादा होती थी, आपने अपने नाना जी को देखा, मामा जी को देखा, पिताजी और आपकी मदर की आपने ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश की। अब जो पीढ़ी है जेन जी,
1: जी
0: आप ये मानते हैं कि पहले की जो पीढ़ियों में गैप था वो उतना नहीं था और अब जो पीढ़ियां आ रही है उनमें एक संवाद का, एक कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा आप महसूस करते हैं?
1: बिल्कुल मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया से, क्योंकि अब है ना सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया कि सब फोन में बिजी हैं,
0: जी
1: अपने अपने स्पेस में बिजी हैं। तो जो घर पे बैठ के जो फैमिली में डिस्कशंस होते थे, प्लस जो आपके डिस्टेंट रिलेटिव, चाचा चाची मासी वासे, वो सब आजकल हट गए हैं सर,
0: बिल्कुल।
1: उसकी जगह मोबाइल ने, फेसबुक इंस्टाग्राम ने ले लिए पड़ा
0: कई
1: है
0: बार
1: सर।
0: ऐसा भी होता है कि आप डिनर पे हैं और चारों जने हैं, उनमें कोई दो बात कर रहे हैं और दो जने मोबाइल पे ही कुछ अपना देख रहे हैं, ऐसा भी होता है?
1: मेरी वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में सर,
0: जी
1: डिनर टेबल पे मोबाइल अलाउड नहीं है सर,
0: वाह वाह क्या बात
1: बिल्कुल अलाउड नहीं है।
0: है
1: वो फोन अगर है भी तो साइलेंट पे होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे फोन अलाउड नहीं है।
0: ये अच्छी बात है और मुझे लगता है कि सम्मान पूर्वक और सभी खुशी खुशी से इस बात को एक्सेप्ट और
1: जी
0: स्वीकार करते होंगे।
1: जी सर,
0: और जो पेट्स हैं वो भी आपके आसपास ही रहते हैं उस वक्त,
1: जी सर, जी सर।
0: उनका भी डिनर टाइम और आपका डिनर टाइम एक ही
1: नहीं, पेट्स
0: समय
1: का
0: के
1: डिनर टाइम
0: आसपास
1: अलग है सर,
0: अलग है?
1: तो जब हमारा डिनर होता है तो हम उनको अलग से सेपरेट करते हैं, अदरवाइज वो भी थोड़ा
0: जी
1: फूड के लिए वो रहते हैं सर।
0: कौन सी ब्रीड के आपके पेट्स हैं
1: हमारे
0: सर?
1: पास 2 गोल्डन रिट्रीवर है सर, और
0: जी
1: एक पर्शियन कैट है सर।
0: तो उन दोनों में बॉन्ड कैसा है? गोल्डन रिट्रीवर और पर्शियन कैट दोनों आमने सामने कव्वाली की मुद्रा में रहते हैं, एक वो कंपटीशन जैसे चलता है ना दो पार्टीज
1: नहीं
0: में?
1: सर, पर्शियन कैट है, बहुत नॉटी है। तो ये क्या, दोनों डॉग्स कई बार उसके पास जाते थे और उसने उसको वो जैसे गुर्राया, अब वो क्या करते हैं, उनको अवॉइड करता है, कैट को अवॉइड करते हैं, उनके पास जाते ही नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब अच्छी बात ये है कि आमतौर पर जो है वो कैट जो है वो बचने के लिए भागती है, लेकिन यहां पर वो
1: उल्टा ही
0: दोनों जो
1: है
0: है उल्टा है, एक मतलब परिवार के अंदर रह रहे हैं, ये चीज उनको समझ में आई हुई है। पेट्स से हम क्या सीख सकते हैं सर?
1: अनकंडीशनल लव,
0: बिल्कुल।
1: अनकंडीशनल लव।
0: और चूंकि आपके पास दो हैं, पर्शियन कैट भी है और जो डॉगी हैं, तो दोनों का व्यवहार अलग किस्म का होता है,
1: जी, जैसे जो
0: तो
1: डॉग्स होते हैं ना सर, वो अपनी जो भावनाएं हैं वो बहुत अच्छे से प्रकट करते हैं, बहुत अफेक्शनेट है, वो सारा जो अपने को बताते हैं कि आई लव यू इस तरह से।

0: इन कैट्स जो है वो थोड़ा सा रिजर्व नेचर की होती है, वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर सकती।
1: अनकंडीशनल लव के मामले में कैट को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं,
0: यस
1: कर सकते हैं, ऐसा होता है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते, आपको समझना पड़ेगा,
0: समझना पड़ेगा। लेकिन डॉग्स का क्या है कि वेगिंग द टेल्स, लिक करना, जंप करना,
1: ग्रेटिट्यूड आपको शो करते हैं, अगर आपने कोई चीज उनको दी है तो उसके वो मतलब ग्रेटिट्यूड अपना किसी तरह से प्रकट कर देंगे।
0: भाई आपका घर में आना ही उनके लिए वो ग्रेटिट्यूड है। अगर आप सुबह से शाम को घर आए तो उनके लिए वही ग्रेटेस्ट जॉय ऑफ द वर्ल्ड है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो कम प्रिविलेज्ड उन्हीं के भाई हैं जो बाहर गलियों में रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आप सोचते हैं कि क्योंकि वो क्या कई बार बहुत अनहेल्दी कंडीशंस में रहते हैं और है तो उनके पुअर कजन ही है एक तरह से,
0: जी जी सर,
1: तो उनके बारे में कुछ सोचा आपने?
0: बिल्कुल जरूर सोचते हैं सर। मेरा जो बेटा है डॉक्टर अमन, वो उसका डॉग फाउंडेशन है सर।
1: अच्छा,
0: तो
1: अच्छा।
0: वो उसकी जो गाड़ी है उसमें सारा फर्स्ट एड किट होती है।
1: वाह।
0: और उसने यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं, पेट्स वेटनरी, उनसे उन्होंने कोऑर्डिनेट कर रखा है, कहीं भी रस्ते में उसको इंजर्ड डॉग दिखता है तो अपनी गाड़ी में डालता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट देता है, उसका डॉग एम्बुलेंस बुला के उसको वहां हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराता है। सर्दी हुई, सर्दी में जैसे उसने ब्लैंकेट बनवाए डॉग्स के लिए, गर्मी हुई तो जो पानी की कुंडियां रखवाई। इस तरह से हम लोग भी सर जो बाहर डॉग्स हैं उनको फूड देते हैं सर, फूड देते हैं, वाटर देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो मेरा बेटा है डॉक्टर अमन, ही इज डेडिकेटेड टू पेट्स।
1: बिल्कुल।
0: उसका वैक्सीनेशन कराना, उनको मास वैक्सीनेशन कराना,
1: तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है सर। जो बाहर कुत्ते घूमते हैं उनका एंटी रेबीज वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है ताकि दूसरों को नुकसान न हो और दूसरे उनके पास जाने से डरे ना।
0: फूड जो है ना सर, बेचारे भूखे होंगे तो दे विल बी एग्रेसिव। इफ समवन इज सेट, अगर फील्ड है तो वो एग्रेसिव नहीं होगा, बिकॉज एवरीवन नीड्स फूड।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मेरी मदर कहती है कि हम लोग तो खाना मांग के खा सकते हैं, ये किससे मांगेंगे? तो इनको भी बेसिक नीड चाहिए, पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पर लोग सब इनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते। कोई इनको कोई आता है तो इनको मारते हैं, कोई गर्म पानी डालते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो बेसिक चीज इनकी, अगर फूड इनकी मिल जाए प्रॉपर तरीके से तो ये एग्रेसिव नहीं होंगे।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर अक्षय कुमार सोलंकी, बहुत अच्छी बातचीत हुई इस प्रोग्राम में आपसे, और आप संगीत प्रेमी भी हैं, आपने बहुत अच्छे गाने भी सुनवाए इस प्रोग्राम में। जाते जाते आप हमारे दोस्तों को कौन सा गाना सुनवाएंगे, उस गाने के बाद में हम आपसे विदा भी लेंगे, तो आखिर में कौन सा गाना इस प्रोग्राम में हमारे दोस्तों को आप तोहफे के तौर पर सुनवाना चाहते हैं?
0: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
1: ये अपने आप में बहुत फिलोसॉफिकल दार्शनिक किस्म का गीत है, बहुत सुंदर गाना है, ये गाना सुनते हैं। उसके बाद जाते जाते आपसे हमारे दोस्तों के नाम एक संदेश लेंगे और फिर आपसे विदा लेंगे।

0: तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम के आखिरी चरण में। हम हैं 102.1 FM रेडियो सन सिटी ओपन शो प्रोग्राम में। आज विशेष मेहमान हैं हमारे डॉक्टर अक्षय कुमार सोलंकी, नामी जनरल सर्जन और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संस्थापक संचालक। बहुत आपने सोच विचार के बाद में हॉस्पिटल खोलने का और जो सपना देखा उसे मूर्त रूप देने का काम किया है। अब इस प्रोग्राम में आखिर में आप हमारे तमाम दोस्तों से जो एक घंटे तक आपकी बातचीत सुन रहे थे उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं सबके फ्रेंड हैं और डॉक्टर भी इंसान है और जो शरीर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, तो हमेशा अच्छा ही आउटकम निकले ये नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी आउटकम होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं वो किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, हर डॉक्टर्स के लिए पेशेंट सेम है, कोई उसके लिए अलग नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसको और स्ट्रांग करें और उसको थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस आए।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी बात आपने कही है। और डॉक्टर अक्षय कुमार सोलंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे इस प्रोग्राम में हमारे साथ में बने रहने का और आने का, बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में आज इतना ही। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम ओपन शो, बातें मुलाकातें। इस प्रोग्राम में आज आप सुन रहे थे सर्जन एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अक्षय कुमार सोलंकी से संजय व्यास की बातचीत। प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की।

102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये एफएम सन सिटी चैनल है और अब आप सुनेंगे प्रोग्राम मन का रेडियो।

मन का रेडियो, इस प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं बल्कि मन होना चाहिए। तो मेरा मन है कि आपसे बातें करूं, शब्द भी हैं और वक्त भी है।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बीराम मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
4: तो दोस्तों, बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज वो बातें करेंगे जो कभी कभी मेरे मन में ख्याल बनकर उभरती हैं। कुछ दिन तो ज़रूर लगते हैं, मगर सवालों के जवाबों की गुत्थी सुलझा ही लेती हूँ। मन का रेडियो शुरू हो चुका है। ये प्रोग्राम बातें आपसे हो रही हैं और गीतों का सिलसिला भी जारी है। चलिए प्रोग्राम में पहले सुनते हैं ये गीत, फिर आगे आपसे और बातें करते हैं।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
3: इस समय आपने ट्यून किया है FM सन सिटी चैनल 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम का नाम है मन का रेडियो।

आप होशियार हैं, अच्छी बात है, पर हमें मूर्ख ना समझें, ये उससे भी अच्छी बात है। मित्रों, अक्सर ऐसा ही होता है, हम में से कई लोग सामने वाले को बेवकूफ़ समझकर बातें करते हैं और इस सोच से हमारी बात भी निरर्थक साबित होती है और हमारे रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं हो पाते।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

टीवी मोबाइल से हमारा रिश्ता इतना गहरा हो गया है कि इंसानों से रिश्ते दिखावे के हो गए हैं। दिलों के तार टूटते जा रहे हैं। जरा ये ख्याल कीजिए कि जब हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है या कोई बड़ा काम आ पड़ता है, तो डिजिटल वर्ल्ड उतना काम नहीं आता जितना इंसान के रूप में रिश्तेदार, मित्र, आस पड़ोस के लोग काम आते हैं। तो याद रखिए, इन रिश्तों को प्रेम से सींचे, छोड़े नहीं।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
2: आपने ट्यून किया है FM सन सिटी चैनल और प्रोग्राम का नाम है मन का रेडियो।

मन में बहुत सी बातें आती हैं, ऐसा होता तो वैसा होता, ये होता तो वो होता, एक चीज़ की पूर्ति होती है तो दूसरी मन मस्तिष्क के द्वार पर आ खड़ी होती है। आज मल्टी कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग का ट्रेंड है और लोगों के मन में ग्रीनरी का ड्रीम अधूरा रह जाता है। कभी जगह की कमी, सनलाइट की कमी, प्लांट्स को अंदर रखते हैं तो प्लांट्स अच्छी तरह से पनपते नहीं हैं, बाहर खुले स्पेस में रखने की जगह नहीं होती। मगर इन बहानों से क्या आपको प्लांट्स से रुख मोड़ लेना चाहिए? नहीं, हर सिचुएशन में हमारे पास आइडिया ज़रूर होता है। अब आप इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हरियाली को पनपा सकते हैं, ये बात करेंगे इस गीत के बाद में।

तो साथियों, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पास आइडिया है तो उस आइडिया से हम उस प्रॉब्लम को काट सकते हैं और समस्या को समाधान में बदल सकते हैं। हमारे घर में बहुत से ऐसे टूटे बर्तन होते हैं, चाय के कप होते हैं, मग होते हैं, पुराने डिब्बे, पुरानी ट्रे, पुराने सैनिटरी पाइप, ग्लास और पुराने कट्टे। अब इनमें हरियाली आप कैसे लगा सकते हैं, प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं? इनमें आप सेरेमिक की कोटिंग कीजिए और जो मिनी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो हमें हरियाली देते हैं, घर के माहौल को ठंडक कायम करते हैं, छोटी जड़ें होती हैं, उन पौधों को आप इसमें लगा सकते हैं। और इनके आसपास वाटर कलरिंग या किसी भी तरह का कोई भी ब्यूटी टूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं जो इन्हें खूबसूरती दे सके। और इन छोटे छोटे पॉट को आप जगह बांट बांट कर चारों ओर रख सकते हैं, जगह बदल सकते हैं। तो देखिए, आपका ये ड्रीम है बहुत जल्दी पूरा हो सकता है।

0: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
1: मन का रेडियो। तो साथियों, इस प्रोग्राम में हमने जब बात पेड़ पौधों की, हरियाली की छेड़ी ही है, तो क्यों ना इस बात को आगे बढ़ाएं। और हरियाली से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा गीत भी हमने सुन लिया। देखिए, मैंने आपसे बात कही कि पेड़ कैसे लगाना चाहिए, पौधे लगाने का सपना कैसे पूरा करें, मगर हम घर के अंदर एक छोटा सा जंगल भी बना सकते हैं, और जंगल तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अब आप पूछिए कैसे। अगर आपके घर में बड़े साइज के कोई पुराने बर्तन हैं, बाल्टी है, टब है, या फिर कोई बहुत बड़ा भगोना है, तो इसमें आप बाहर से पेपर मैशी या जिसको पेपर की लुगदी कहते हैं उसका लेप कर इस एक बर्तन में आप 7 से 8 तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं। और प्लांट्स को कुछ इस तरह से लगाइए जिसमें कुछ कांटे वाले प्लांट हो, कुछ फ्लावरिंग हो, अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इनमें आप कुछ एनिमल, आर्टिफिशियल जो होते हैं एनिमल, बर्ड्स, फाउंटेन

लाइटिंग ये सब लगाकर इसे छोटे जंगल का रूप दे सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे तो आपको खुशी तो महसूस होगी ही और आप कभी भी उदास नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि इस छोटे से जंगल को छोड़कर कहीं भी जाने का दिल आपका बिल्कुल भी नहीं होगा।

और प्रोग्राम का नाम है मन का रेडियो। साथियों, किसी ने बहुत खूब कहा है, किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह खड़े रहो, गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सकूं।

साथियों, जिंदगी बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत पाठशाला है, बस इसे जीने की जरूरत है, काटने की नहीं। अगर छोटे छोटे पलों को हम जीना सीख जाएं तो हम इंजॉय भी कर सकते हैं और सब सुकून भरा महसूस होने लगता है। हम अक्सर अपने स्वार्थ की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, इसलिए फोकस एरिया हमेशा सीमित हो जाता है। लेकिन अगर आप एंजॉय की चीज़ों पर ध्यान देंगे तो ज़िंदगी बोझ नहीं बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी।

मन का रेडियो इस प्रोग्राम को आज आपके लिए प्रस्तुत कर रही थी आपकी दोस्त हिना। अगले बार फिर मिलेंगे। आज इस प्रोग्राम को अभी यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मन का रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम सन सिटी चैनल है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवन और उनकी योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी

0: एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में, यानी यादों की महफिल कार्यक्रम में, हमने राज बब्बर की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है निकाह। आवाजें महेंद्र कपूर और सलमा आगा की। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और धुन बनाई है रवि ने।

महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में अभी अपनी फिल्म निकाह का ये गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम याराना, गीत रचना रानी मलिक की और धुन

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी और फिल्म का नाम था याराना।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, युगल स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल के, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत। फिल्म का नाम है वारिस और गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

रविंद्र जैन का संगीत साहिर लुधियानवी की बोल है, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजी, फिल्म का नाम इंसाफ का तराजू।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: महेंद्र कपूर की आवाज, फिल्म का नाम आज की आवाज, गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि।

0: बहुत भाई, तालियां उनके लिए, मजा आ गया, कमाल कर दिया,
1: थैंक यू। यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनिए निदा फाजली की रचना, मनहर उदास की आवाज, उषा खन्ना का संगीत और फिल्म का नाम आप तू ऐसे ना थे।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जुगल किशोर तिलक राज की संगीत निर्देशन में लीजिए हम आपको सुनवाते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की ये फिल्म है भीगी पलकें।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं दोस्तों, आपके शहर में बारिश हुई या नहीं, या अभी भी आप धूप में बहुत परेशान हैं? बताइए आपके शहर में चिलचिलाती धूप है या फिर हल्की फुल्की बूंदे। लेकिन हमारे कार्यक्रम में आज हल्की फुल्की बारिश है और साथ में है प्यारी सी हमारी छतरी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में छतरी केवल धूप या बारिश से बचने का साधन नहीं होती है ना, बल्कि ये धैर्य, सुरक्षा और दूरदर्शिता का एक गहरा दार्शनिक प्रतीक होती है। क्यों, सही है ना? ये हमें सिखाती है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचने की तैयारी जरूर की जा सकती है। जैसे छतरी बारिश में या चिलचिलाती धूप में खुद उस धूप को सहती है, बारिश को सहती है, तूफानों को सहती है, लेकिन हमें सुरक्षित रखती है। ठीक वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में आने वाले संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मबल भी एक ढाल की तरह काम करता है, यानी एक छतरी की तरह काम करता है। तो आज का ये सफर हम शुरू करते हैं इसी छतरी के नाम। तो सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं ना? अरे बताइए मेरे साथ हैं भी कि नहीं? देखिए ना, मुझे अकेले इस सुरीले सफर में निकलने से डर लगेगा। आप अगर मेरे साथ हैं तो ये सफर यूं ही आसान हो जाएगा जैसे हर बार होता है। तो बताइए, लिखिए फटाफट कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं, है ना? और हाँ, अपनी छतरी लेना मत भूलिएगा। हो सकता है कहीं बारिश हो, कहीं चिलचिलाती

धूप हो, कई बहुत बुरी गर्मी हो तो हम परेशान न हो जाएं, और ये सफर सुरीला ही बना रहे, इसलिए आज का ये सुरीला सफर हम शुरू करते हैं। हाँ, हमारी आज की इबारत, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने इबारत नहीं लिखी, ऐसा नहीं है। आज जो हमने इबारत लिखी है वो ये है कि दशकों तक मुख्यधारा में हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया, और इन गानों ने हमें छाता जरूर दिया, यानी हर फिल्मी गाने में ये छाता जरूर हमें मिला। और छतरी का ये उपयोग इसलिए किया गया कि फिल्मों में बारिश के दौरान नायक और नायिका एक छतरी के नीचे आकर उनके बीच का प्यार हमें दर्शाया जाता है, उनके बीच की केमिस्ट्री से हमको अवगत कराया जाता है, इसलिए इन छतरियों का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही डांस सीक्वेंस में रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करके वो जो सेट है उसे आकर्षक बनाया जाता है। और बहुत से गीतों में बारिश होते समय छतरियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जहां बारिश नहीं थी लेकिन नायक और नायिका के बीच छतरी थी। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं छतरियों के नाम, आपके नाम, इस गीत के साथ।

0: करो ना।
1: करो इंतजार आएगा वो दिन, थोड़ी देर है
0: कब आएगा।

तो सुरीला सफर में तो हमने बारिश की शुरुआत कर दी है। आपके शहर में बारिश हुई या नहीं आप हमें बताने वाले हैं, और कितना मजा आता है ना इस गीत को। जब आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि पूरे गाने में नायिका छतरी को खोलने नहीं देती है, और अंत में जब नायक छतरी खोलता है तो छतरी उड़ जाती है। छतरी उड़ गई, कितने मजे में वो कहते हैं उड़ जाने दे, है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ लिखा है छतरियों पर और इस रिमझिम बारिश पर। एक श्रोता लिखती है कि सदियों से रिमझिम गिरती बूंदें और हिंदी सिनेमा का रोमांस एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दरअसल बारिश में भीगते हुए जब एक ही छाते के नीचे नायक और नायिका करीब आते हैं तो ये सिनेमा के सबसे खूबसूरत और यादगार दृश्यों में से एक बन जाता है। टिप टिप गिरती बूंदों की धुन और छतरी की ओट में पनपता ये भीगा हुआ प्यार दर्शकों के दिलों में आज भी एक मीठी सी हलचल पैदा कर देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर मानसून और मोहब्बत का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। जब जब रुपहले पर्दे पर बादल गरजे हैं तब तब प्रेम की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं। इस भीगे हुए रूमानी माहौल को मुकम्मल बनाने में छतरी ने हमेशा एक बेहतरीन माध्यम का काम किया है। बारिश की बौछारों के बीच एक ही छतरी के नीचे सिमटे नायक नायिका के बीच की दूरियां पल भर में मिट जाती हैं। ये छोटी सी छतरी केवल पानी से बचाने का साधन नहीं बल्कि उनके दिलों को करीब लाने और सुलगते हुए जज्बातों को हवा देने का एक जादुई जरिया बन जाती है। पुराने दौर के श्वेत श्याम गानों से लेकर आज के रंगीन दौर तक छतरी के साये में पनपा ये रोमांस दर्शकों के दिलों को आज भी गुनगुनाता है। बहुत सुंदर। तो हम आपको बता दूं ये गाना फिल्म दो झूठ से हमने लिया था। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, एमजी हशमत के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि साउथ इंडिया विशेषकर केरल में बारिश से बचने के लिए छतरी के बजाय पारंपरिक बांस और ताड़ के पत्तों से बनी एक विशेष टोपी नुमा छतरी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ओलाकुड़ा कहा जाता है। बहुत सुंदर जानकारी, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात से छाती का और छाती से रोमांस का बड़ा घनीभूत रिश्ता है, खासकर हमारी हिंदी फिल्मों में। छाता प्रतीक है साथ चलने का, हिस्सेदारी का, देखभाल का, साथ ही सुरक्षा और छाया देने का भी। ये जीवन में प्रेम का प्रतीक भी है। एक छाता कैसे दो प्रेम करने वालों को नजदीक ला देता है, ये फिल्म श्री 420 के गाने में आप देख सकते हैं। पुराणों में कथा है कि परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते और छाता भेंट किए थे। तरह तरह के रंगीन छातों से लेकर काले छातों तक मन के पिटारे में छातों की बहुत सी यादें आज भी कैद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और छाती का रोमांस बेहद जादुई होता है। जहां तेज हवा के झोंके छाते को उड़ा ले जाते हैं और दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, तेज हवा में जब छाता उल्टा होता है तो पल भर के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। बारिश और छतरी का यह रिश्ता सिखाता है कि जब तक मौसम सुहाना है तब तक साथ खूबसूरत है, लेकिन जब तेज हवा जैसी मुश्किलें आती हैं तो साथ निभाने के लिए लचीला होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है आप लोगों ने। मैं हमारे सभी श्रोताओं की उनकी लेखनी की बहुत कायल हूं। तो चलिए अगला गीत उन्हीं जज्बातों को लेकर सुनते हैं जहां सुलगते हुए जज्बात हैं और नायक और नायिका एक ही छतरी के नीचे

सुरों की महफिल सजी है, धड़कनों का साथ है, संगीत की इस राह में हर पल एक खास बात है। आइए मिलकर खो जाएं सुरों के इस संसार में, जहां हर धुन में छिपा जीवन का एहसास।

0: इसी एहसास को बरकरार रखने के लिए चलिए आपकी दो प्यारी दोस्त मैं ज्योति पुरोहित और मेरे साथ हैं
1: ज्योत्सना।
0: हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वीकार करें हमारा स्नेहिल भरा नमस्कार।

ज्योति, वाकई में संगीत हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम है। जब हम दुखी होते हैं तो ये सात स्वर हमें सांत्वना देते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हमारी खुशियों को और भी बढ़ा देते हैं। जब संगीत अपने वाद्य यंत्रों के साथ चलता है तो इसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। हर वाद्य यंत्र अपनी संस्कृति और परंपरा की कहानी कहता है।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, प्राणोजी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: सखियों, जीवन एक संगीत है और संगीत के सात सुरों से संवरती है हमारी सेहत। और इसी विषय पर आकांक्षा व्यास से बातचीत कर रही है मेरी सखी ज्योति पुरोहित। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: संगीत एक वो भाषा जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, ये सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंच जाती है। इन्हें मधुर सुरों और सुरीली धुनों के साथ आज आपका स्वागत है नारी वाटिका के सुरों के सफर में। संगीत जिसकी शक्ति, जिसका जादू हमारे जीवन को खुशियों, सुकून, प्यार और उत्साह से भर देता है। सात सुरों से सजी है दुनिया की हर कहानी, सात सुरों से सजी है दुनिया की हर कहानी, संगीत ही है जीवन की सबसे मधुर निशानी। तो चलिए सखियों, इस मधुर निशानी के साथ सुरों की इस मधुर यात्रा पर, जिसमें हम आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी युवा शास्त्रीय गायिका से जिनकी संगीत यात्रा बचपन से ही पारिवारिक संस्कारों और गुरु परंपरा के सानिध्य में शुरू हुई। आकांक्षा व्यास, आपका स्वागत है नारी वाटिका के कार्यक्रम में।
2: जी बहुत बहुत आभार आपका ज्योति जी, मुझे नारी वाटिका के इस रोचक कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए।
1: जी बिल्कुल, और सबसे पहले मेरे जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आप अपने बारे में और अपनी संगीत यात्रा के बारे में हमारे सखियों को बताएं।
2: जी ज्योति जी, मेरा जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत जो है वो एक सिर्फ एक कला नहीं बल्कि मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग की तरह रहा। संगीत प्रेमी माता पिता के प्रोत्साहन और घर के स्नेहिल वातावरण ने ही बचपन से मेरे मन में संगीत के संस्कारों का बीजारोपण कर दिया था। लेकिन मेरे प्रथम गुरु जो रहे वो मेरे चाचा जी, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ और बांसुरी वादक श्री संजय बोहरा जी। तो उनसे मैंने बचपन से 12 साल की उम्र में मतलब बढ़ते बढ़ते संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और फिर सुगम संगीत में मैंने डिप्लोमा किया। और अनेक इस दौरान मैंने सांस्कृतिक आयोजनों में, स्कूल कॉलेजेस में हिस्सा लिया, प्रस्तुतियां दी और श्रोताओं का स्नेह भी अर्जित किया। उसके बाद फिर शास्त्रीय संगीत की मेरी विधिवत शिक्षा जो है उसका शुभारंभ मैंने उस्ताद श्री शकूर खान जी के मार्गदर्शन में संगीत नाटक एकेडमी के साथ शुरू किया और राजस्थान की जो हमारी समृद्ध लोक संगीत परंपरा है उसका अध्ययन और अभ्यास भी मैंने भवदाल जी लांगी जी के सानिध्य में किया। इसके साथ साथ मैंने संगीत में कंप्यूटर साइंस में बीटेक की शिक्षा भी ग्रहण की क्योंकि संगीत मेरे लिए सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं था, तो वो जो जर्नी थी वो आज भी सतत निरंतर जारी है। संगीत की यात्रा तो मेरी आज भी सीखने का हर दिन मैं प्रयास करती रहती हूँ और ये एक सतत प्रक्रिया है, जीवन का अभिन्न अंग अब बन चुका है संगीत, ये मैं जरूर कहूंगी।
1: जी जी, आकांक्षा जी, आपने जैसा कि बताया कि आपने शास्त्रीय संगीत में डिप्लोमा कोर्स किया जी, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
2: जी जी जी, इसमें एक्चुअली ज्योति जी, जो भारतीय संगीत का जो विराट स्वरूप है, जो शास्त्रीय संगीत का विराट स्वरूप है, वो आप जब सीखते हैं तभी आपको पता चलता है कि ये कितना वास्ट है और उसमें हमें राग परिचय, ताल परिचय, जैसे संगीत की जो पद्धतियां हैं, ध्वनि की उत्पत्ति से लेकर नाद, स्थान और किस तरह से ताल को ठा और दुगुन में लिखने का अभ्यास, ताली देते हुए बोलने का अभ्यास, ये सब सिखाया जाता है उसमें। तो वो राग परिचय में जो पॉपुलर प्रसिद्ध रागे हैं, है ना, जो खमाज, यमन, हमीर, उसकी जो ठुमरियां हैं, तो वो एक जब आप सीखते हैं तब आपको एक अलग तरीके से उसे गाने का मौका मिलता है, फिर आप साधना करते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया मेरे जीवन में रही बचपन से।
1: आकांक्षा जी, जब शास्त्रीय संगीत को सीखते हैं, ये एक अपने आप में, वैसे बोला जाता है संगीत खुद अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, और उसमें भी जब हम बात शास्त्रीय संगीत की कर रहे हैं तो कुछ इसको सीखने में कोई आपको कोई विशेष, कोई बड़ी, कोई चुनौती का कोई सामना करना पड़ा?
2: जी संगीत में अगर हम इस विधा की बात करें जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है, तो इसकी तो जो उत्पत्ति है वही सामवेद, ये वेदों से आया हुआ एक शास्त्र है। तो इसके लिए जो हमें निरंतर सतत जो साधना, जो प्रक्रिया है, उसमें रियाज जो है वो सबसे बड़ी अपने आप में चुनौती है कि उसे एक साधक की तरह उसको आपको निरंतर जो कंटिन्यूटी है ना वो आपकी भंग नहीं होनी चाहिए। रियाज जो है, बड़े बड़े

0: गुरुजन जो है वो भी यही एडवाइस करते हैं कि आप रोज रियाज जो है वो ना छोड़ें। रियाज जब तक आपका रहेगा तो आपका गला जो है वो हमेशा आपका साथ देगा, है
1: तो
0: ना।
1: इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम होता है कि हर दिन का इतना घंटा अभ्यास
0: जी
1: करना
0: जी जी
1: जरूरी होता
0: बिल्कुल
1: है?
0: बिल्कुल, जो मॉर्निंग टाइम है उसकी राग जो है भैरवी, उस समय आप अगर उस पर्टिकुलर राग को उस समय गाएं तो उसका इम्पैक्ट आपके माइंड बॉडी सोल पे डेफिनेटली अलग रहेगा। और इसी तरह से ये डिजाइन है कि उस समय में आप उस पर्टिकुलर राग को जब गाएंगे तो वो एक निखर के जो आता है संगीत।
1: अब इस शास्त्रीय संगीत में जैसा आप बता रहे हैं कि खूब सारे तरीके की राग होती हैं,
0: जी
1: तो आज हम जैसे बात कर रहे हैं कि मतलब संगीत का हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या
0: जी
1: इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसा कुछ उन रागों में है जो इन दोनों को किस
0: जी
1: तरीके
0: जी
1: से
0: जी
1: इफेक्ट
0: बिल्कुल
1: करता है? हमारे
0: बिल्कुल
1: सखियों को थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बताएं आप।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा राग बेस्ड जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो इतना पावरफुल है ज्योति जी, कि जो स्ट्रेस हार्मोन जो है हमारा कॉर्टिसोल, जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारे स्ट्रेस के लिए, वो उसको कम करने में, उसको बढ़ाने में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो कि हमारे फील गुड हार्मोन जो है हमारा डोपामाइन, उसको इंक्रीज करने में भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो एक अहम भूमिका निभा सकता है। क्योंकि ये आपको एक हैप्पीनेस जो आपका हार्मोन है उसको रिलीज करता है, डोपामाइन को रिलीज करता है। आप जब भी अपना पसंद का म्यूजिक सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो स्ट्रेस है वो काफूर हो गया है ना। तो ये जो संगीत में ये जो शक्ति है इस तरह से काम करता है कि वो आपको पेन रिलीज, स्ट्रेस रिलीज, तो वो तो डेफिनेटली एक बिल्कुल रेलेवेंट बात है आपने जो कही कि वो बिल्कुल कम करता है। सेहत पर भावनात्मक रूप से इतना जुड़ाव है संगीत का हमारे मस्तिष्क से कि वो जब आप पर्टिकुलर एक थेरेपी के रूप में आप उसको ले सकते हैं। इसीलिए आजकल साउंड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी वो इतनी पॉपुलर हुई है। और ये एक सिग्निफिकेंट रिसर्च के बाद एक कंक्लूजन में ये बताया गया है, स्टडीज में पाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि ये काम करता है इस तरह से।
1: यानी यूं
0: जी
1: कहें कि अपन म्यूजिक को सुने या खुद गुनगुनाएं, तो
0: जी
1: उस वक्त जो हमारी मसल्स होती हैं, क्यों कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन मोड में चली जाती है,
0: जी
1: आदमी खुद को
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: रिलैक्स फील करता है।
0: जी
1: ये
0: बिल्कुल
1: एक तरीके
0: बिल्कुल
1: से मतलब औषधि हो गई हमारे लिए, संजीवनी बूटी का
0: जी
1: काम
0: बिल्कुल
1: कर रहा है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टिव थेरेपी है जरूर ये जी।
1: तो इसको हम एज अ थेरेपी भी बोल सकते हैं?
0: राग अहीर भैरव एंड तोड़ी ये जो है ये तो प्रेस्क्राइब की जाती है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए, है ना। शिवरंजनी जो है वो आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है, भैरवी जो है वो आपके साइनस को ठीक करती है। ये इस तरह के जो है वो वेदों में हमारे बताया गया है, ये प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे दी जाती थी, है ना। म्यूजिक थेरेपी ही इसीलिए इसको कहते हैं।
1: यानी कि संगीत जो है वो मतलब हमारी नब्ज की जो गति है
0: जी
1: उसको धीमा करके मेंटल प्रेशर को भी कम कर देता है,
0: जी
1: और इवन हमारे ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल कर देता है। मतलब
0: जी
1: हमारी काफी हद तक दवाइयां भी मिट सकती है बीपी की,
0: जी ज्योति
1: जो
0: जी, जब
1: आजकल
0: सुरों को हम एक निरंतर एकाग्रता से साधते हैं, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल इफ आई वुड से कि मैंने ता ये लगाया, अब दिस इज वर्किंग ऑन माय मूलाधार चक्र, मेरे मूलाधार चक्र को मैं डायरेक्ट कनेक्शन है इसका। और
1: जी
0: जब मैं सातवा जब मैं लगाऊंगी तो वो मेरा सहस्रार चक्र पे काम कर रहा है। तो ये जो है हमें जो हमारे बॉडी के जो 7 चक्रास हैं, जो कि योगिक प्रैक्टिसेस में हम जो बोलते हैं कि 7 चक्रास ऑफ अ बॉडी, ये हमारे एकदम अलाइन हो जाते हैं जब आप शास्त्रीय संगीत को निरंतर एकाग्रता से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक बॉडी अलाइनमेंट का काम करता है आपके लिए, इसीलिए स्ट्रेस बस्टर है ये। जी
1: और जब हमारा मेंटल प्रेशर खत्म हो जाता है तो हमारा मेमोरी भी अच्छा हो जाता है, शार्प हो जाता है, वर्किंग
0: जी
1: अपने
0: बिल्कुल
1: आवर्स भी बढ़ जाते हैं, काम करने का
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तरीका बहुत अच्छा पर।
0: बिल्कुल
1: तो आकांक्षा जी, मतलब कहने का मतलब संगीत अपने आप में बहुत अनूठी चीज है, और
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: तो किस तरीके का संगीत जो है, वैसे
0: जी
1: हर तरीके का संगीत हमें सुकून देता है नो डाउट, बट फिर
0: जी
1: भी आप मतलब क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके का संगीत हम सुने जो वाकई में हमें बहुत ज्यादा सुकून दे? और जैसा
0: जी
1: कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं कि आज 3 साल का बच्चा है वो भी टेंशन में है कि होमवर्क नहीं किया तो टीचर डांट लगाएगी, और
0: जी
1: 65 साल का वृद्ध आदमी है तो उसको अपने घर परिवार जिम्मेदारियों के तले वो डूबा हुआ है, उसको टेंशन रहती है, तो वो
0: जी
1: सारी टेंशन

0: दूर हो जाए कुछ समय के लिए जब वो संगीत को सुने, तो ऐसा कोई संगीत?
1: जी देखिए, ऐसे तो म्यूजिक का हर जो जॉनर है वो ही अपने आप में सुरीला और वन ऑफ अ काइंड है ना। और मुझे भी बचपन से हर तरह के म्यूजिक को सुनने का शौक रहा है, तो मैं लता जी को भी सुनना पसंद करती हूँ और उतना ही चाव से मैं माइकल जैक्सन और फ्रैंक सिनाट्रा जी को भी सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि म्यूजिक जो है वो अपने आप में ही एक थेरेपी है। तो किसी को खाना, जैसे खाने में जैसे चॉइसेस होती हैं कि किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को तीखा खाना पसंद है, वैसे ही उसी तरह से जो हमारे जो चॉइसेस है वो बदल सकती है, लेकिन सबके लिए वो एक मनोरंजन का और एक हैप्पीनेस क्वेश्चन को डेवलप करने का ही काम करेगा। तो इसीलिए आजकल बच्चों और युवाओं में भी आप देखिए कि मी बीइंग अ मदर मायसेल्फ, मैं बच्चों को हमेशा जो भी आप राइम्स नर्सरी से लेकर के आप जो भी सिखाएंगे उन्हें वो हमेशा याद रहेंगी, इसीलिए बाल्यावस्था में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है पोएम्स के थ्रू, राइम्स के थ्रू, कि बच्चे उस चीज को याद रखें। और आपको भले ही अपने किसी भी कक्षा का कोई गणित का फॉर्मूला याद हो या ना हो, लेकिन आपको बचपन में विद्यालय में की हुई प्रार्थनाएं हमेशा याद रहती है,
0: प्रार्थनाएं याद रहती है, कविताएं याद रहती है, बिल्कुल
1: जी, उसका मेमोरी पर बहुत गहरा प्रभाव होता है, मानव मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव है संगीत का। इसीलिए अभी आजकल जो भजन कॉन्सर्ट का और क्लबिंग का जो कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस हुआ है वो वैश्विक स्तर पर इतना पॉपुलर इसीलिए हो रहा है कि वो युवाओं से कनेक्ट, युवा उससे कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। इसीलिए हर तरह का जो म्यूजिक है वो डिपेंड करता है कौन कैसा, बट वो हमेशा आपको कुछ पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में लेकर आएगा, ये मैं जरूर।
0: जी जी जी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और फोन पे, मतलब हर तरीके से देखें, और उनके साथ रहना भी काफी हद तक जरूरी हो गया क्योंकि हमारा काम रुक जाता है। बच्चों की एजुकेशन है, यूथ की पढ़ाई है, कोई भी फैक्टर को आप उठा के देख लें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस में यंगस्टर्स रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, तो उनके लिए मतलब आप क्या बताना चाहेंगी कि उनके लिए संगीत जो है कितना जरूरी रहेगा?
1: जी मैं तो ये चाहूंगी कि हर व्यक्ति जो है वो संगीत को सुने जैसा भी उसे पसंद है, क्योंकि जब तक आपके मानसिक अवसाद आपके जीवन में रहेगा तब तक आपकी कार्य प्रणाली ठीक से काम कर नहीं सकते आप, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। और जब भी आप संगीत को अपने जीवन में लेकर आएंगे तो अवसाद, मानसिक अवसाद तो जरूर काफूर हो जाएगा, ये मैं जरूर कह सकती
0: हूँ। आकांक्षा जी, कई बार हम महिलाएं
1: जी
0: बहुत परेशान रहती हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: कुछ इमोशंस होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कई बार हम बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत माइंड कर बैठती हैं और पूरा दिन निकल जाता है उस छोटी सी बात को सोचने के लिए, और हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। महिलाओं के लिए भी संगीत जरूरी है?
1: जी बिल्कुल,
0: इतना
1: बिल्कुल
0: जरूरी है? और आज वाकई में इस चर्चा के थ्रू मैं चाहती हूँ कि हमारे सखियों को आप बताएं कि हम लोगों को भी रोज का कितना घंटा सच में रियाज करना चाहिए और अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहिए।
1: जी जी जी मनोरंजन के साथ साथ जो है संगीत, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो घर और बाहर की जिम्मेवारियों से घिरी हुई है, तो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, मैं ये कहूंगी कि संगीत जो है वो एक भावनात्मक संबल प्रदान करता है, थकान और तनाव को दूर करने में वो बहुत सहायक होता है। और इसीलिए लयबद्ध संगीत पर थिरकना एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है, ये महिलाओं को रचनात्मकता और सेल्फ एक्सप्रेशन जो अभिव्यक्ति है उसको उनकी वो सुदृढ़ करता है। मुझे याद है कि ऑफिस से आने के बाद मेरी मम्मी जरूर अपने पसंद के गीतों को सुना करती थी, उस समय भी आकाशवाणी पर जो भी प्रसारित होते थे, और वो एक स्ट्रेस बस्टर का काम करते थे। तो इसीलिए ये इतना ज्यादा महिलाओं के लिए भी जरूरी है ना। इसीलिए जुम्बा इतना पॉपुलर हो रहा है कि उस म्यूजिक के साथ जब वो किया जाता है तो वो एक अलग तरीके से आपकी वेलबींग को नरिश करता है। जी
0: ये यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बात करें कि तेज संगीत कोई चल रहा है
1: जी,
0: एक कोई मधुर संगीत चल रहा है,
1: जी
0: उसमें भी उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है ना?
1: जी जी इसमें ये है कि तेज और मधुर, तो जैसे कि प्राकृतिक संगीत जो है, जैसे नदी का बहना, झरने का जो संगीत है उसके पानी का गिरना, या फिर चिड़ियों का चहचहाना, कामिंग इफेक्ट इनके हमारे मस्तिष्क पर होते हैं, लेकिन वही जो है वो आपको किसी युवा से अगर आप पूछेंगे तो उसे वो जैज या पॉप या रॉक म्यूजिक से भी मिल सकती है, तो ये अपने अपने चॉइस की बात है मैं ये कहूंगी। लेकिन हाँ जरूर ये है कि आप अगर कभी भी इस तरह की मधुर या कामिंग इफेक्ट्स वाले सॉन्ग्स या उन्हें सुनेंगे तो वो आपके माइंड बॉडी एंड सोल को रिलैक्स करेंगे और रिलैक्सेशन में हेल्प।

0: बहुत ही प्यारी लग रही है। मन हो रहा है कि आप अपना कोई पसंदीदा म्यूजिक कंपोजिशन हमारी सखियों को सुनाएं प्लीज।
1: आपका ज्योति जी, वैसे तो पसंदीदा शब्द जो है वो संगीत अपने आप में एक अथाह महासागर है, और इसमें से एक मोती चुनना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी मतलब मेरी एक जो पसंदीदा कंपोजिशन है लता जी ने जो गाई है, वो मैं आपके श्रोताओं को जरूर उन्हें पसंद आए ऐसा मेरी कामना रहेगी जी।

0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने। आकांक्षा जी, हमारे जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत सीख रहे हैं, या आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर हम जैसे लोगों ने यदि मानस बना लिया कि हमारी आवाज कैसी भी हो, हम रोज रियाज करेंगे और खुद को खुश रखेंगे, तो उन कलाकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: जी देखिए, संगीत जो है वो सबसे, उसे सीखने के लिए और उसे साधने के लिए सबसे प्रथम चरण, जो पहला स्टेप है, वो यही है कि आप बचपन से अच्छा संगीत सुनिए, गुणी जनों को सुनिए, और यदि संभव हो तो गुरु शिष्य परंपरा में सीखिए, क्योंकि ये विद्या ही गुरुमुखी विद्या है। जब तक गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, आप एटलीस्ट भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो अगर आप सीख, तो वो गुरु को अपना जो है सब कुछ समर्पित करने के बाद ही आप वो सीख सकते हैं। और उसके साथ साथ निरंतर रियाज जो है वो डेफिनेटली सफलता की कुंजी तो वही है कि एक दिन भी, जैसे हम अपने दूसरे दैनिक कार्यक्रम नहीं भूलते हैं, उसी तरह से खाना खाना नहीं भूलते हैं, वैसे ही रियाज जो है वो आपका छूटना नहीं चाहिए।
1: अपनी दिनचर्या
0: इसीलिए
1: का हिस्सा बनाना है इसे।
0: जी बिल्कुल
1: आकांक्षा जी, वाकई में किसी ने सच ही कहा है कि शास्त्रीय संगीत की गंभीरता, लोक संगीत की मीठी मिट्टी की खुशबू, भक्ति संगीत की श्रद्धा और फिल्मी संगीत की लोकप्रियता, सच में वाकई में हर प्रकार का जो संगीत है वो अपने आप में एक अलग ही दुनिया लिए हुए, जो आज हमारे जीवन को रंगों से और भावनाओं से भर रहा है। और
0: जी
1: वाकई में आज आपने हमारी सखियों को बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, संगीत से रूबरू कराया और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताया। इसके लिए आपका आकाशवाणी परिवार और नारी वाटिका की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: थैंक यू ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस रोचक कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा व्यास से ज्योति पुरोहित की बातचीत। विषय था, संगीत के सुरों से संवरती है सेहत। संगीत जहां है गीत वहां है, गीत जहां है प्रीत वहां।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सखियों, आपका स्वागत है नारी वाटिका कार्यक्रम में और हम बातें कर रहे हैं संगीत और संगीत के वाद्य यंत्रों की। ज्योति, यूं तो हमारे वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रिंग से बजने वाले
4: जी,
3: और हवा से बजने वाले, और तीसरे थाप से बजने वाले।
4: बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना आपने कि ये वाद्य यंत्र जो हैं कई तरीके के हैं, और जब ये वाद्य यंत्र हमारे संगीत के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत ही मधुर सुर, लय, ताल के साथ में हमारा संगीत जो है वो हमारे सामने आता है और हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। बात करें हमारे राजस्थान की धरती की तो वो सिर्फ रंगों और लोक नृत्यों के लिए नहीं है, वहाँ

0: वो जो है अपने आप में खूब सारे वाद्य यंत्रों के लिए भी बहुत फेमस है, और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत जो है उसको भी ये बहुत जीवंत बनाते हैं। और इन वाद्य यंत्रों में रेगिस्तान के मिट्टी की खुशबू और लोक जीवन की आत्मा बसती है। बात करें यहाँ के रावण हट्टा की मधुर तान की, कमायचा के गूंज की, अलगोजा की सुरमई लहरियों की और मोरचंग की अनूठी ध्वनि की, तो बात ही कुछ और है।
1: बिल्कुल, आपने बात की मोरचंग की, तो मैं आपको बताऊं कि जो ये मोरचंग है ना, वो
0: जी
1: यू शेप वाला एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो हजारों सालों से हमारे राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में लंगा और मांगनियार समुदाय अपने लोकगीतों में मोरचंग का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। जो इसकी बनावट है ना ज्योति, वो
0: जी
1: मुख्यतः लोहे से बनाई जाती है। इसके निर्माण के लिए लोहे को गर्म करके उसे यू आकार दिया जाता है, यानी यू शेप बनाया जाता है। फिर उसके बीच में एक पतली धातु की जीभ लगाई जाती है जिसकी कंपन से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। कारीगर इसे सावधानी से ट्यून भी करते हैं, मतलब अलग अलग ट्यून्स भी उसमें डालते हैं, तो उससे वो बजता है। और कई फिल्मों में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
0: अब पता है जो उसने राजस्थान के अलावा इसे और भी कई जगह पे मोरसिंग के नाम से भी जाना जाता है, और वहीं असम में इससे मिलता जुलता एक वाद्य यंत्र है जिसको बोलते हैं गोगोना, और ये बांस से बनाया जाता है। बहुत ही प्यारा वाद्य यंत्र है।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ज्योति, हम अपनी सखियों से बातें कर रहे थे हमारे रंग बिरंगे राजस्थान की और यहाँ की लोक वाद्य यंत्रों की।
4: जी बिल्कुल।
3: अगला जो वाद्य यंत्र है वो अक्सर बोलता हुआ ढोल कहलाता है, जिसे कहते हैं भपंग। ये मुख्य रूप से राजस्थान के अलवर क्षेत्र में प्रचलित है और इसे विशेष रूप से मेव समुदाय के लोक कलाकार बजाते हैं। भपंग एक एकतारी ताल वाद्य है। इसे सूखी लौकी की लकड़ी के खोखले भाग और उस पर चढ़ाई गई चमड़ी से बनाया जाता है। इसके बीच में एक तार लगा होता है जिसको हाथ से खींचकर और एक दूसरे हाथ से छोटी लकड़ी की छड़ी से थपथपाकर बजाया जाता है।
4: जी।
3: तार के खिंचाव को बदलने से इसकी ध्वनि की ऊंचाई बदलती रहती है, जिससे ये बोलती हुई आवाज जैसा प्रभाव पैदा करता है।
4: बिल्कुल सही कहा। और संगीत वाकई में अपनी भाषा हर जगह छोड़ता है और इस भाषा को हर कोई समझता है और समझने की कोशिश भी करता है। वाकई में सखियों, अपनी रंग बिरंगी संस्कृति, गरबा, लोक संगीत के लिए हमारे गुजरात की तो बात ही निराली है, बड़ी अलग ही उसकी पहचान है। बात करें जोड़िया पावा की, यानी कि जो तो बांसुरी के साथ बनाया जाता है और एक बांसुरी तो सुर को बनाती है तो दूसरी लय को बनाकर मधुर धुन छोड़ती है। और हाँ, इतना ही नहीं, ढोल नगाड़े की गूंज गरबा और लोक उत्सव में एक नया जोश, उत्साह और एक नई ऊर्जा का संचार करती है।

0: अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ज्योति, एक और प्यारा वाद्य यंत्र हमारे पास है जिसको सिर्फ एक तार से बजाया जाता है। बिल्कुल। जिसके यह एक तार वाला वाद्य साधु संतों, फकीरों और लोक गायकों का प्रिय साथी रहा है। एक तारा को आमतौर पर सूखी लौकी, नारियल के खोल या लकड़ी के बने तुम्बे पर चमड़ा मरकर तैयार किया जाता है। इसके साथ बांस या लकड़ी का लंबा डंडा लगाकर जिस पर एक ही तार बांधा जाता है उसे उंगली से तार को झंझार कर बजाया जाता है।
2: वहीं महाराष्ट्र की तुतारे की बात करें ज्योत्सना, जिसे फूंक कर बजाया जाता है। और इसका यूज जो है ना, इस वाद्य यंत्र का जब युद्ध की घोषणा होती थी उस वक्त बजाया जाता था, और कोई इम्पोर्टेंट मैसेज मतलब समाज को देना होता था, समुदाय को देना होता था, उस समय इसको बजाया जाता था। और लेजिम की बात करें तो लेजिम का प्रयोग भी जब हम व्यायाम वगैरह करते हैं तो, और लोक नृत्य है
1: तो परेड में भी
2: जी बिल्कुल उसके दौरान इसका यूज काफी किया जाता है।

0: दोस्तों, जब वीणा के तार झनकृत होते हैं, जब संतूर की मधुर ध्वनि गूंजती है और जब शहनाई का स्वर वातावरण को पवित्र बनाता है और जब ढोल की थाप कदमों को थिरकने के लिए मजबूर करती है, तब हम महसूस करते हैं कि संगीत वास्तव में जीवन का उत्सव है।
1: सखियों, अब विदा लेने का समय हो चला है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया। उम्मीद है कि आज की यह नारी वाटिका की वार्ता आपको पसंद आई होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा गुनगुनाते रहें। इसी भाव के साथ इस पूरे कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग दिया HPT से सुनील जयपाल और राय सिंह राव ने, कंट्रोल रूम से दिलीप सिंह परमार और कंसोल से मीठे मीठे गीतों को आप तक पहुँचाया साक्षी परिहार ने, और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजन किया मनीष सोलंकी ने, और हम थी आपकी दो रेडियो सखी ज्योत्सना और मेरे संग
0: ज्योति पुरोहित।
1: तो दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता

0: 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में

0: चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: तो बता छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी।

0: आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सती परीक्षा। गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी।

0: की और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

0: इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास के हैं और संगीत एस एन त्रिपाठी का है।
1: जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत।

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते

0: करते हो हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी है और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक केसर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। गायिका हैं लता मंगेशकर।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी. तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार.
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार. और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है. और देखो, बहुत सारी बातें भी हैं. तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती, कि हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी.
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर आए. तो सब लोग, हमारे साथी लोग, सखिया लोग जुट गए हैं. तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत. हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की. और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है. वो है आग में घी डालना.
2: घी डालना, तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं.
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें. और साथ ही आंगन के विषय में बताएं, उनका आंगन घर का कैसा था,
2: कैसा था,
1: कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में.
2: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशंस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. यानी बड़े प्यारे से विषय हैं आरती, लेकर आई हो तुम. तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं.

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। काली पलक पिया तोरी
1: माला, बिल्कुल, और चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं। वो लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके जरिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
0: तो बताइए।
1: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीजें उपयोग करते ही हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है, जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
0: बिल्कुल आरती। और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
1: बिल्कुल। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर

0: पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं, तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माई फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपके वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं, वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ही scw.dosje.gov.in जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती है तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहां हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
0: जी बिल्कुल, और एल्डर लाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567 और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
1: बिल्कुल, और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
0: बिल्कुल, अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे तरीके से।
1: और आरती देखो, हमारी एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
0: बिल्कुल, और इस तरीके की जो चीजें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके उसके लिए हम, अगर कोई घर में उस समय नहीं है, तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास न हो सके।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है इस चीज के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फोन भी चल गए हैं जिनके जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के

0: परिवार के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है। घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है। अंग्रेजी में से एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
1: बिल्कुल। और एक और महेश जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
0: और आरती, कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई और उसको सुन करके तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है, और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
1: पड़ोसी हो चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
0: और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद है वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जैसे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम
1: बिल्कुल
0: कर रहे हो, है ना?
1: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखो भाई, इतनी गीत के बाद हम लोग फिर अपनी उसी बात पर आ गए हाँ. कि भाई आग में घी डालने वाली बात पे.
1: तो क्या कह रहे हैं श्वेता?
0: साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है. इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं. अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है. आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है. बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना.
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए. शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में 1 2 3 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है.
0: बिल्कुल. और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना. ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होते हैं. और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज्यादा है.
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है नमक मिर्च लगा के, तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती हैं. और वो जो मनमुटाव है, जो मन भेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं.
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित
1: रखे. ये मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे. तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं.
0: समय हो चला है
1: एक अंतराल का.

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कोन्स एवं हवन सामग्री।
2: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
3: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरा मंडो।
2: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
4: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है।
0: बिल्कुल, हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
1: जी।
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया मेरे बाजू में।

0: रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
4: अब बताओ तुम क्या करते?
3: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देशभर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती है, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया AI के लिए, जहां पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी।

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, हाँ। तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करने
1: बिल्कुल आंगन की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना, पछोड़ना, गेहूं, चकिया धरना, ये सारे जो काम होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी, पापड़, कचरी, अचार, ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुट जाता
1: बिल्कुल
0: था।
1: हर मौसम समझ लीजिए हमारे आंगन में उतरता था,
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो पंगत में जो खाना खाया जाता था वो भी चटाई डाल करके, बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी उसकी, उस पर बैठ कर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग मजा है। और गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या कहने वाली थी?
1: मैं ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो असली मजा होता था ना वो आंगन में आता था, क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप छप, इतना मजे आते थे कि मतलब
0: तुम्हें याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था, और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे कि पानी
1: ये
0: भर जाए।
1: मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी, सभी के घर आंगन, जिनके जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहां पे सब काम किस तरह से, कैसे क्या करना है, वो चीजें भी करना, वहां पे एंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का, वो भी करते थे।
0: और देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वहीं नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था। और आंगन में याद है जब कपड़े में, साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल

0: के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर के
1: बिल्कुल.
0: करते थे, तो बहुत मजा आता था
1: और
0: उन
1: रात
0: यादों में.
1: में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते हैं, अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे. तो बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से.
0: बिल्कुल. और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था. जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं, वो डुला करके एक दूसरे को करते थे
1: बिल्कुल
0: हवा. वो भी बहुत यादगार है. और
1: बिल्कुल
0: हमारे साथी क्या
1: बिल्कुल.
0: लिखते हैं
1: हमारे एक
0: बताओ.
1: साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में. बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे, गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे. और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे, बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे. प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए. रोशनी थी, हवा थी. आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था. और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी.
0: क्या बात है. और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है. आंगन वो जगह होता है जहां बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहां माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहां बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते, रेडियो सुनते थे. आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहां सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी. मतलब सोच लो
1: बिल्कुल
0: कितना सुंदर था वो समय. और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं.
1: बिल्कुल
0: सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी. इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यहीं से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई. घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं. उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूं कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही, और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ. हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है. बहुत सारी यादें साझा करिए. और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जब ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था.
1: बिल्कुल. और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी. यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी. और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे. मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में.
0: बिल्कुल. और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे. आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे. ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था. सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था. घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे. और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी के चौवारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे. याद होगा तुम्हें कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी वहीं रखे जाते थे. यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था. हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी.
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं. झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं. छुई मुई का पौधा है, उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं. आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं. घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है. ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है. आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था. आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है.
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं. और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे. और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के. पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे. इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा, प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था. साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है जो अति आवश्यक है. परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है जिससे

0: घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है। वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पर बनता था, किसी किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों
0: पढ़ाई
1: के
0: कर रहे
1: समझ
0: हैं।
1: लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहां सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाते पोतों को कहानियां सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे। आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे, तो उसका भी एक अपना मजा है जो है आज भी
1: और
0: आंगन में बना हुआ है।
1: हर मौसम का, चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका यह होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहां जहां धूप जा रही है ना वहां वहां पे कुर्सियां भी जा रही है, चारपाई भी जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में। ये बहुत अच्छा टाइम पास था कि उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो वो भी काट के सब, मतलब
1: तो
0: खान पान से
1: मतलब
0: लेकर
1: जो
0: सब
1: भी
0: काम
1: चीजें
0: आंगन
1: आपको
0: में।
1: जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज
0: तो फिर
1: का।
0: आनंद उठाते हैं गीत का।
1: बिल्कुल, एक गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में गुजार लिया,
1: इस आंगन में हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी,
0: अब हमें चलना चाहिए। तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और आतिश श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।

एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15।
1: आना आ भी जाना, इंतजारी है तेरी।
0: फिल्म मुल्क।
2: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
1: एक टुकड़ा धूप का अंदर गर्म सा है।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
1: बेखबर
3: दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
3: जी।
4: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
3: ओहो,
4: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेतीबाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
3: जी।
4: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
3: जी,
4: ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
3: जी, जी।
4: ये 1984 का जमाना था।
3: कितने बड़े थे आप?

0: 71 में पैदा हुआ।
1: ओ, तब तो बहुत छोटे।
0: हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था, 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूं, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे?
0: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
1: अच्छा।
0: जो पान में सुपारी खाई जाती है, वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
1: जी
0: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था।
1: क्या
0: और
1: बात है?
0: आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
1: जी, जी, जी।
0: या उसको समझने में, या उसके महसूस करने में।
1: हाँ।
0: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
1: रेडियो का स्विच ऑन कर,
0: हाँ, कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे काटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
1: बज रही थी,
0: और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं।
1: क्या बात।
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई, और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है। उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं,
1: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे।
0: मैं, हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने,
0: मेरे अंदर का शायर जो है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम।
0: हाँ, तो वो, हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे, उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई होती थी उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, खत्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है जो चलता रहता है।
1: तो वो गजल याद है?
0: गजल तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना।
1: क्या बात है।
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका भी मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात
0: है,
1: वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की। तो
0: बिल्कुल,
1: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की।
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है। शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाए, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ, या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ, वो सुना दें आप, मदहोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है।
1: क्या बात है।
0: घर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मदहोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना जरूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है वो भर जाता है, वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है जख्म भरते ही।
0: जी,
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
0: जी जी,
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: तो मैं समझता हूं कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसेटिव प्राणी है।
0: जी
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहां रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
0: बिल्कुल,
1: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और ममानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता,
0: बिल्कुल सही बात,
1: जितना अधिकार आपका आपके बाप के यहाँ।
0: बिल्कुल,
1: तो जब आप सेंसेटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहां पले, लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसेटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसेटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस था,
0: चल रही थी।
1: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था।
0: जी,
1: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे थे, और एक दिन वो फट गया और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ।
0: जी,
1: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा, निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी नहीं लड़की।
0: जी जी जी,
1: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो इंग्लिश में, स्किज़ोफ्रेनिया। मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ, जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का, उसके बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो है चीजों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
0: महसूस करते हैं। वो जो खरोचे होती है वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो।
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
0: क्या बात है,
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
0: वाह,
1: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
0: वाह वाह वाह,
1: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है
0: जी,
1: हम उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में
0: हाँ।
1: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको
0: हाँ।
1: नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार बड़ा फनकार बनाता है,
0: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।
1: तो दर्द हीरा है, दर्द मोती है।
0: क्या बात है।
1: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियां होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियां, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
1: नानी की मोहब्बत है यार।
0: बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी का।
1: मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
0: क्या बात है।
1: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एक आध वाकया जरूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस जमाने में टीबी लाइलाज था
0: जी जी,
1: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बजाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे जिंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी।
0: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
1: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत।
0: जी जी।
1: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से।
0: हाँ।
1: एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था।
0: हाँ।
1: जैसे मैं गणित में कमजोर था।
0: हाँ।
1: और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, हाँ। दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था।
0: हाँ।
1: उसमें कमजोर था।
0: हाँ।
1: बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
0: तेज थे,
1: बहुत तेज था मैं।
0: हाँ,
1: हाँ।

0: यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
1: हाँ, सूरत में।
0: जी, सूरत में जी। तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
1: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था
0: जी।
1: और गुजरात उर्दू एकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की।
0: जी, शीनकाफ निजाम भी आया था इसमें।
1: शीनकाफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, वो उसका संचालन किया था
0: जी।
1: अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है।
0: मिली आपकी पता है। लेकिन अभी श्रोताओं तक पहुंचाना है।
1: उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली
0: जी,
1: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीनकाफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे सब। और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे मुल्क में। संदेशे आते हैं, है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही जमाना था। और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
0: जी जी।
1: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था। और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं, बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीनकाफ निजाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे।
0: जी, जी, जी।
1: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि होटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
0: और उसमें जावेद प्रूफ करने का जरूरत था।
1: हाँ, जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीनकाफ निजाम साहब से शायद पहले मिला हूंगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, क्योंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था, मैं तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवानही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी। दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ।
0: क्या बात है,
1: है ना।
0: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा था।
1: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
0: जी।
1: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा

0: इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए?
1: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है। एक टुकड़ा धूप,
0: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा,
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी,
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो
0: जी।
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे
0: जी।
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये बात तो नहीं पता।
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नावेल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था
0: जी।
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती है या कलकत्ता में रहती है, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूं लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी 80 तक,
0: भीड़
1: और 80 तक आया है,
0: आर्टिकल
1: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी
0: जी।
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खासतौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
0: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम्बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम्बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
0: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
1: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
0: देर आए दुरुस्त।
1: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने
0: जी,
1: वाले
0: जी, जी।
1: तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहां जाता हूँ अकेला और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के।

0: हैं, इसलिए आपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी,
0: है। बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ
0: है। हाँ,
1: व्हाट्सएप नंबर। हाँ,
0: तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी, जी, जी,
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए। उसका म्यूजिक, मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार,
0: जिद
1: फिल्म,
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीजे इश्क हूं मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने जी। ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाइए, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ तेरी फरियाद हो गया, है ना। तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझमें, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें। तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया। पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया है। वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है।
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
1: तो रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
0: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई, पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बजाहिर मर गया है
1: जी,
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है। इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बजाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहां इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है। अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे।
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह।
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे, और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है, और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी
1: जी।
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज

0: करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है। वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

ये आकाशवाणी का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। शाम के 5 बज चुके हैं, अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। राहुल जी, कैसे हैं आप? सभी के हाल और उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया ही होंगे। और बढ़िया क्यों भी नहीं हो भैया, देखिए जोधपुर में चलचलाती गर्मी है और गर्मी से जब राहत मिल जाती है ना, जब थोड़ी थोड़ी सी शाम होने लगती है, और शाम के साथ साथ एक और बढ़िया ऐसी प्यारी सी चीज़ होती है, वो है आपका पसंदीदा कार्यक्रम। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं 531 किलो हर्ट्ज़ और FM बैंड 102.1 पर युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम जिसे बोलते हैं युवाणी। और आज

0: क्योंकि आपके साथ दो प्यारे से रेडियो बड़ीज जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को और स्पेशल बनाने के लिए एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज आपके लिए। फिलहाल मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो राज रोहित, और आज मेरे साथ
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके आज के रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता। और आज का प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है क्योंकि रोहित ने बोला सरप्राइज है, तो इस गाने को सुनने के बाद हम जो है हमारा सरप्राइज बताएंगे आपको।
0: बिल्कुल, और गर्मी के बाद ये जो शाम आती है ना, उस शाम के बाद ना हम सबके मन से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है।

0: आपको जो है हमसे जुड़ने के लिए करना सिर्फ एक काम है, वो काम है कि आपको नंबर डायल कर रहे हैं। नंबर हमारे हैं 02912553300। दूसरे नंबर भी बता देते हैं, दूसरे नंबर है 02912554300।
1: बिल्कुल, एक बार फिर से बताए दे रहे हैं, हमारे नंबर है 02912553300, 02912553300। लेकिन आपको अभी कॉल नहीं करना है, इस गीत के बाद हम जब आपसे सवाल पूछेंगे उसके बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी? तो चलिए फिर हमारा आप मिलकर सुनते हैं ये वाला गीत।

0: बिल्कुल जी, पहले से ज़्यादा इसलिए जीने लगे हैं क्योंकि थोड़ी सी छांव जो है अब हमें दिखने लगी है और ये गर्मी फाइनली कम होती नज़र आ रही है। और बिल्कुल जी, वेलकम जी, इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी, और आज जो स्पेशल चीज़, आज जो स्पेशल सरप्राइज़ है वो ये है कि आज मंगलवार है। और वैसे सभी को पता भी नहीं था कि मंगलवार के दिन जो है ना, हम लोग एक क्विज कंपटीशन लेके आए थे हमारे सारे
1: बिल्कुल
0: लिसनर्स के लिए, जो कि सीधा हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर हम खेलते हैं उनके साथ क्विज। और तीन सवाल हम लोगों से पूछते हैं, अगर तीनों के सही जवाब दे देते हैं तो भैया जोरदार तालियां हम अपनी तरफ से उनके लिए बजाते हैं, और अगर किसी भी सवाल का वो गलत जवाब देते हैं तो हम नेक्स्ट पार्टिसिपेट को कॉल पर लेते हैं। तो ये प्यारा सा गेम है, सिंपल से रूल्स हैं, बहुत इजी और अच्छे सवाल होते हैं। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो मैं तो आपसे सीधी दरख्वास्त करने वाला हूँ कि भैया प्लीज़ प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ और देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है।
1: बहुत ज्यादा मजा आने वाला है।

0: इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम, और आज स्पेशल चीज़ यही है कि बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आने वाले हैं, और उन्हीं के बीच में जो है आज का हमारा पहला कॉल जो है वो आ चुका है। तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है,
1: खेताराम,
0: एक बार फिर से बताइए।
1: खेताराम कह रही हूँ,
0: खेताराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जैसलमेर।
0: जैसलमेर से बात करते हैं। क्या करते हैं खेताराम जी आप?
1: मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ,
0: पढ़ाई कर
1: टेंथ।
0: रहे हैं? किसकी पढ़ाई कर रहे हैं सर आप?
1: हेलो,
0: हेलो, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? कौन सी क्लास में हैं या किस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है खेताराम जी?
2: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो,
0: आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
1: आवाज आ रही।
0: हाँ, तो बताइए किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास में हैं आप?
1: मैं 10th क्लास में हूँ।
0: 10th क्लास में हैं, बिल्कुल। और क्या बनना चाहते हैं आगे जाके आप?
1: आगे जाके
0: लगता है किसी कारणवश जो है इनका कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है। कोई बात नहीं, मुझे लगता था थोड़े से नर्वस हो गए थे खेताराम, जैसा लगता था कि बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछ ली, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 02915253300, 02915253300। फटाफट से आप इस पर कॉल कीजिए और क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। फिलहाल हम और आप मिलकर सुनते हैं ये वाला म्यूजिकल ट्रैक।

0: और ऐसे ही धीरे धीरे एक और कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आइए इनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मुकेश नाम,
0: मुकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं गुरु का तालाब से,
0: गुरु का तालाब से आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल जी। क्या करते हैं मुकेश जी आप?
1: ये हैंडीक्राफ्ट का काम है।
0: हैंडीक्राफ्ट का आप काम करते हैं, तो आप तैयार हैं हमारे साथ कुछ खेलने में?
1: हाँ
0: ठीक है, तो एक बहुत इजी सा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ सबसे पहले, क्योंकि आप हमारे पहले कॉलर हैं। तो आप हमें बताइए कि कथक किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ। ए ऑप्शन उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्व भारत, या ऑप्शन डी पश्चिम भारत।
1: हाँ सर, प्रश्न एक बार वापस बताएंगे।
0: कथक किस क्षेत्र से संबंधित है? कथक बिलोंग्स टू विच रीजन? अगर आप कहें तो मैं ऑप्शन भी रिपीट कर सकता हूं।
1: हाँ मैं ऑप्शन दक्षिण दे, कथक का सर हम
0: जी, कथक
1: कथक, हाँ ये दक्षिण भारत से है।
0: दक्षिण भारत। सॉरी सर, एकदम गलत जवाब है। कथक जो है वो डेवलप हुआ था नॉर्थ इंडिया, यानी कि ये जो है इसका सही आंसर, इसका जो है वो है उत्तर भारत। वहां से कथक जो है बॉर्न हुआ था। फिलहाल बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करते हुए, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं सुनना ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: इसी धीरे धीरे गाने के बीच ही अगले लिसनर भी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो विनीता मैडम नमस्कार, जोधपुर से बात कर रहे हैं, दिनेश सोडा।
0: जी जी नमस्ते दिनेश जी।
1: नमस्कार साहब, नित्या जी नमस्कार।
2: नमस्ते।
0: अच्छा दिनेश जी, अभी जो है यूथ क्विज चल रहा है।
1: हेलो
0: हेलो हेलो,
1: शुक्रा बोलूं मैं, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है लिसन में
0: दिनेश जी? हेलो
1: मैडम, कॉल है ना, एक साथ में दो कॉल जुड़ गए, मैं आपके कंसोल पे बैठे जो भी अलाउंस। जी जी
0: हेलो हेलो,
1: हाँ जी मुकेश से बोलूँ, सुखराम
0: जी। मुकेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सुखराम मेघवाल।
0: अच्छा अच्छा सुखराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: कहाँ से बात कर रहे हैं
1: सर? जी मुकेश से।
2: बिल्कुल सर, और आप तैयार हैं हमारे साथ कुछ खेलने में?
1: हाँ जी साहब।
0: अच्छा आपका पहला सवाल जो है वो है सुखराम जी, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं
1: मैडम?
0: जी नहीं, ऑप्शन सुन लीजिए एक बार। आपके आपका ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 9 या फिर डी 12। हेलो
1: जी
2: सर, 10 जो है वो एकदम गलत जवाब है, क्योंकि क्रिकेट में सिंपली 11 प्लेयर्स होते हैं, जो 11 लोगों की टीम होती है और उसमें जो है क्रिकेट खेलते हैं। लगता है कि सिर्फ क्रिकेट तभी देखते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और कोई बात नहीं भैया, इंडियन है ऐसे ही है, चलता रहता है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ने वाले हैं, फिलहाल जब तक कॉलर जुड़ते हैं आइए हम और आप सुनते हैं ये वाला म्यूजिकल ट्रैक।

0: क्या बात है, बैक टू बैक अगले लिसनर भी हमसे जुड़ चुके हैं. बात करते हैं इनसे. हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम.
0: गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: विनीता मैम, दिनेश सोडा बोल रहा हूँ. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे नितेश वैसे कि दो कॉल साथ में जुड़ गए हैं, प्लीज
2: बिल्कुल कोई बात नहीं सर, अब आपसे ही सीधी हमारे साथ बात होने वाली है और केवल आपसे ही हम बात करेंगे और कोई भी आपसे खेलेंगे. तो विनीता जी,
0: बिल्कुल.
2: क्या सवाल है, पूछे इनसे.
0: इनका सवाल जो है वो है, फीफा का पूर्ण रूप क्या है?
1: ऑप्शन दे दीजिए. फुटबॉल का है ये? फुटबॉल
2: हाँ
1: का
2: हाँ
1: फुल
2: इसका
1: फॉर्म
2: फुल
1: है
2: फॉर्म क्या
1: फुटबॉल
2: है, फीफा को क्या
1: फेडरेशन.
2: बोलते हैं? बिल्कुल ऑप्शन विनीता जी बताएंगे आपको.
1: ऑप्शन दे दो मैडम प्लीज.
2: बिल्कुल, मैं ही आपको ऑप्शन बता देता हूँ. आपके ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, आपका बी ऑप्शन है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, आपका ऑप्शन सी है फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन अथॉरिटी, एंड डी ऑप्शन है फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एजेंसी.
1: फर्स्ट ऑप्शन राइट है ऑप्शन, सबसे पहला.
2: फेडरल ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन,
1: यस सर,
2: ये आप कितना श्योर है?
1: मैं तो
2: पूरा श्योर
1: 90%
2: है,
1: श्योर हूँ.
2: 90% श्योर है, लेकिन सर जो पीछे के 10% है ना, वो बता रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन. क्योंकि ये थोड़ा जर्मन इसके अंदर मिक्स है. फीफा जो है पूरे विश्व में फुटबॉल ग्रोइंग बॉडी है और ये फीफा का बहुत बड़ा जो है मैच चलता है पूरे विश्व में, हम इसे देखते हैं. और इसका जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन. फिलहाल बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करते हुए. और एक और कॉलर इसी के साथ हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं. हेलो
1: हाँ सर,
2: जी सर, कैसे हैं आप?
1: सर बढ़िया सर.
2: क्या नाम है सर आपका?
1: सर मेरा नाम दिनेश बाघेला है
2: दिनेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सर, जोधपुर जालोगेर से बात कर रहा हूँ सर.
2: क्या करते हैं सर आप?
1: सर मेरा लिफाफे काम है सर, लिफाफा बनाने का.
0: अच्छा,
2: क्या ही बात है जी, क्या ही बात है. तो आप तैयार हैं हमारे साथ खेलने के लिए?
1: हाँ जी
2: तो आप मुझे एक सबसे सवाल जो है वो मैं इजी पूछने वाला हूँ, इजीएस्ट सवाल आपसे पूछने वाला हूँ. हैप्पी का पर्यायवाची क्या है? हैप्पी मतलब पता आपको क्या होता है?
1: फिर खुशी होती है सर.
2: बिल्कुल सर, तो उसका पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन उदास, बी आनंदित यानी कि जॉयफुल, सी
1: हाँ
2: एंग्री यानी कि क्रोधित, या डी वीक यानी कि कमजोर.
1: सर, बी
2: फिर से बताइए.
1: बी बी
2: बी ऑप्शन यानी कि जॉयफुल.
1: हाँ जी
2: बिल्कुल, जैसा कि मैंने बोला था कि एग्जाम एकदम इजी सवाल आपसे पूछने वाला, और एकदम सही जवाब आपने दिया है, बहुत

0: ही बढ़िया।
1: अच्छा, आपका जो अगला सवाल है वो है, स्वस्थ हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए लोहा, बी कैल्शियम, सी सोडियम या फिर डी पोटेशियम।
2: मैम कैल्शियम।
1: क्या बात है, दोनों सवालों के सही जवाब।
0: फटाफट से जो है जवाब इनके आ रहे हैं। और एक और सवाल जो है आइए इनसे पूछते हैं, मेरे को लगता है इनका भी इनको जवाब जो है सही से पता होगा। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए सहारा डेजर्ट, थार मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल या फिर डी कालाहारी मरुस्थल।
2: भी है थार मरुस्थल।
0: क्या ही बात है, तीन सवाल और तीनों के एकदम सही सही जवाब। जोरदार तालियां आपके लिए हमारे साथ, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। और ऐसे ही जो अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर है
1: 02912553300, दूसरे नंबर है 02912554300। जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल आपको ले चलते हैं इस ट्रैक की ओर।

0: सारी मेहरबानी आपके हमारे पे ऐसे ही बरसती रहती है। और फिर से एक और प्यारे से कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी सर, क्या नाम है आपका,
1: मेरा नाम रणवीर सिंह कविया, गांव बिरई,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बिरई बालेश्वर से। मैं
0: बालेसर से आप बात कर रहे हैं, क्या करते हैं सर आप?
1: तो सिंगिंग का काम करता हूँ।
0: सिंगिंग का काम करते हैं? हेलो
1: हेलो,
0: सिंगर है सर? सर सर पहले देखिए, ये क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैं चाहूंगा कि आप दो लाइन कोई भी आपके पसंदीदा गीत की आप हमें सुनाइए।
1: गीत तो सर कभी गाया
0: अरे
1: नहीं।
0: हवे रणो जी मैं तो भाली नारे हरी रे ना, ना।

0: बिल्कुल जी, इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे युवा पसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है युवानी, और आज आपके साथ दो प्यारी सी आवाजें हैं। अपनी तो तारीफ करनी बनती है, प्यारी सी आवाज दो हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो रागे रोहित, और आज मेरे साथ
1: जी हाँ, मैं आपके आज के रेडियो दोस्त होस्ट विनीता। वैसे ये जो गाना चल रहा था ना रोहित, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनको चलाते ही पैर जो है अपने आप थिरकने लगते हैं। इनका क्या
0: बिल्कुल
1: म्यूजिक है ना।
0: बिल्कुल, ऐसे गाने जो जिन्हें हम बोलते हैं ना हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं ना, जो अगर कितने भी सैड हम लोग होते हैं, अगर इस तरह के म्यूजिकल ट्रैक अगर हम लोग सुन लें, तो मुझे लगता है कि अपने आप से जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है, मन जो
1: बिल्कुल,
0: है वो शांत हो जाता है, और ऐसा लगता है कि
1: किसी की जरूरत नहीं पड़ती है
0: हाँ
1: कि कोई आके जो है हमारा थोड़ा मूड ठीक करे ना। ऐसे गाने चलाओ और बस थोड़ा सा डांस कर लो अकेले में, मजा आ
0: बिल्कुल
1: जाएगा।
0: बिल्कुल। तो जितने भी लोग सैड होते हैं ना, अगर बोलते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है जिनसे हम बात कर सकते हैं, अरे भैया कोई बात नहीं, म्यूजिक इज योर रियल फ्रेंड, म्यूजिक से बात कीजिए, इनसे सुनिए, और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं ना वो भी आप अगर आप समझने लग जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो अकेलापन है ना वो अपने आप से दूर
1: हट
0: होने वाला है, और
1: जाएगा।
0: जितनी भी परेशानियां है ना वो उस म्यूजिकल ट्रैक का जो ड्यूरेशन होता है ना, तब तक तो एटलीस्ट ये तो गारंटी है कि आप भूल ही जाओगे।
1: बिल्कुल। वैसे इसी बीच हमारे अगले लिसनर हमसे जुड़ चुके हैं, बात करते हैं इनसे। हेलो,
0: हेलो,
1: चलिए ये गाना सुन लेते हैं।

0: वाजी वाह, हाथों में है रेत सा इसक तेरा, और फिलहाल जो है हमारे कानों पर है हेडफोन, और हेडफोन पर जो है कॉल कनेक्ट हो चुका है और बात करते हैं इनसे। हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते,
1: नमस्ते संगीता।
0: क्या नाम है आपका? संगीता जी, क्या करती हैं आप?
1: पढ़ाई करती हूँ,
0: अच्छा, पढ़ाई किस चीज़ की कर रही हैं?
1: 11th क्लास।
0: अच्छा, 12th में हैं आप। चलिए, अभी जो है ना एक गेम चल रहा है, क्विज, ठीक है?
1: हाँ
0: तो आपके सामने पहला सवाल जो है बोलूँ मैं?
1: हाँ
0: चलिए फिर सुनिए पहला सवाल। राजस्थान का ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर।
1: जोधपुर।
0: क्या बात है, सही जवाब।
2: बिल्कुल जी, और इसी के साथ आपका जो अगला सवाल है यह है कि कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? एक बार फिर से बता देता हूँ, कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है जोधपुर, बी राजसमंद, सी अलवर या फिर डी कोटा।
1: राजसमंद।
2: राजसमंद। क्या बात है, बिना सोचे हुए जवाब दे दिया।
0: अच्छा, अगला सवाल जो है आपका थोड़ा सा इस जोन से थोड़ा सा अलग है। तो आपका अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में मूल स्वर कितने हैं? आपके ऑप्शंस है ए

0: पांच, बी छः, सी सात या फिर डी आठ।
1: कितने स्वर होते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में?
2: सात।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक के बाद एक इन्होंने तो सारे सवालों के जवाब दे दिए रोहित।
1: बिल्कुल जी, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही जो है सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते रहे और इसी तरह से फटाफट से जवाब देते रहे, तो इस
0: बिल्कुल।
1: कंपटीशन का, इस क्विज का जो है मजा बहुत दोगुना हो जाएगा। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं फिलहाल, उससे पहले हम सुनने वाले हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: चलिए जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: आराम खाए सर से। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, और क्या करते हैं सर आप?
1: खेती बाड़ी का काम करते हैं सर।
0: क्या बात है, खेती बाड़ी बहुत सही है। और चलिए, आपका जमीन से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि राजस्थान की कौन सी कला लघु चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी कला
1: राजस्थान
0: लघु
1: की
0: चित्रकला से प्रसिद्ध है? और वो है आपके ऑप्शंस जो मैं आपको देता हूँ, मधुबनी, बी पट चित्र, सी ऑप्शन आपका है फड़ चित्रकला, और डी ऑप्शन है वारली।
1: फड़ फड़ हो सकती है सर।
0: हो सकती नहीं सर, एकदम वही है, फड़ चित्रकला ही जो है वो राजस्थान की फेमस लघु चित्रकला
1: फड़
0: के लिए प्रसिद्ध है और वो ही फेमस है यहाँ की।
1: चित्रकला सर।
0: बिल्कुल
1: क्या
0: सर,
1: बात है,
0: बहुत
1: सही
0: सही जवाब
1: जवाब।
0: आपने दिया है।
1: अच्छा, आपका जो अगला सवाल
0: हेलो
1: है वो है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देता है? हेलो,
0: आपके ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी खनिज।
1: जी
0: हेलो
1: आपको आवाज आ रही है हमारी?
0: हेलो,
1: पर
0: आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो,
1: आवाज नहीं आ रही।
0: लगता है नहीं, हमारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी आवाज अगर आप तक
1: अब
0: पहुंच
1: अच्छा
0: रही
1: अच्छा
0: है।
1: आ गई, इनको आवाज आ गई। हेलो अब आ रही।
0: जी जी
1: फर
0: जी हाँ, तो
1: चित्रकला
0: चित्रकला आपका एकदम सही जवाब
1: सही
0: है
1: जवाब
0: सर।
1: था आपका।
0: आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर।
1: आपका जो दूसरा सवाल है वो है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी खनिज, डी पानी। खनिज ऊर्जा देता है।
0: जी, शरीर को
1: पानी हो सकता है?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं सर, थोड़ा सा सोचिए।
1: कार्बोहाइड्रेट।
0: हाँ, कार्बोहाइड्रेट ही हो नहीं सकता है, यही होता है सर। सही जवाब। बिल्कुल, थोड़े थोड़े कंफ्यूज होते हो लेकिन आप एकदम सही जवाब दे
1: हाँ,
0: रहे
1: सही
0: हैं।
1: तक
0: मुझे लगता
1: पहुंच
0: है
1: जाते
0: कि
1: हैं ये धीरे
0: ये
1: धीरे।
0: लास्ट जो सवाल हम आपसे पूछने वाले ना, इसका भी आपको सही जवाब आता ही होगा। तो आपका जो तीसरा और आखिरी सवाल वो है ये कि चेकमेट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? एक बार फिर से मैं सवाल दोहरा देता हूँ, चेकमेट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं क्रिकेट, बी शतरंज, सी फुटबॉल, डी टेनिस। केतारान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?

0: शायद वो हमें नहीं सुन पा रहे, लेकिन अगर आप सुन पा रहे हैं और आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो आप हमें
1: नंबर
0: डायरेक्ट कॉल
1: डायल
0: कर सकते
1: कीजिए,
0: हैं।
1: जल्दी से जल्दी नंबर डायल कीजिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। और आपके नंबर है सामने 02912553300, दूसरे नंबर है 02912554300। तब तक जो है आप जुड़ते हैं हमसे, तब तक हम सुन लेते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: क्या बात है, मन चला तेरी और। अभी हमारा मन चल रहा है हमारे अगले लिसनर की ओर। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते। हेलो।
1: हेलो। अरे
0: हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी
1: मैडम,
0: जी। क्या नाम है आपका
1: सीधा है सर।
0: जी, फिर से दोहराइए। हेलो,
1: हाँ मैं
0: क्या नाम है आपका?
1: शिवदान,
0: शिवदान
1: शिवाना।
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो
1: हेलो,
0: शिवदान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, जोधपुर से। चलिए, आपके सामने आज का जो है आपका पहला सवाल वो है, राजस्थान का प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है?
1: वन्य जीव
0: जी
1: अभयारण्य कौन सा है?
0: जी आपके ऑप्शन है ए गिर, बी रणथंबोर, सी कांजीरंगा, डी सुंदरबन।
1: वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? हाँ
0: ऑप्शन दोहराऊं वापस?
1: मैडम, वापस कराऊं।
0: देखिए, आपके ऑप्शन है ए गिर, बी रणथंबोर, सी काजीरंगा, डी सुंदरबन।
2: मुझे लग रहा है कहीं पर ये सर्च करने लग गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो विनीता जी सही जवाब क्या आप बता दीजिए।
0: इसका सही जवाब है रणथंबोर।
2: बिल्कुल जी, कंटिन्यू करते हैं फिर से ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक और उसके बाद करेंगे बहुत सारी बातचीत आपसे। आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं ये वाला म्यूजिकल ट्रैक।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: रोहित, क्या है ना, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है ना, फैसला लेना पड़ता है, कुछ चीजों के लिए स्टेप लेना पड़ता है, खुद के लिए या फिर किसी और के लिए। लेकिन वो जो टाइम होता है, उस टाइम में हम नहीं ले पाते डिसीजन, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है?
4: बिल्कुल, हमेशा हमेशा ही होता है। कई बार हम किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, या करियर वाइज भी अगर हमें सोचना पड़ता है ना कि क्विक डिसीजन लेना है या सोचना है कि ये सही है या वो सही है, तो उसके बीच में एक असमंजस तो हमेशा होती है, एक कंफ्यूजन जो है, एक डाउट ऑफ पॉइंट जो है, वो हमेशा होता ही होता है।
3: मतलब ब्लैंक होता है ना हमारा माइंड, हम समझ नहीं पाते कि हम इधर जाएं या इधर जाएं या करें क्या।
4: बिल्कुल, और ऐसे में आजकल के जो युवा है, आजकल का जो यूथ है, उनके लिए बहुत इजी चीज हो गई है कि वो कुछ भी जो है वो ऑनलाइन सर्च करने लग जाते हैं। कई बार उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और कई बार ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो शायद उन्हें कहीं ना कहीं पर भटका देते हैं। तो चीज का सार यही होता है कि अगर आपके पास कोई बड़े हैं या कोई एक्सपर्ट जिन्हें आप जानते हैं, या अपने पेरेंट्स से आप बात करें, वो किसी एक्सपर्ट को जानते हैं या जो आपको अच्छे से कंसल्ट कर सके,
3: और या फिर जो ऐसा कोई आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान हो, ऐसा कोई दोस्त हो जो आपको अच्छे से समझता हो और वो जानता हो कि आप क्या चाहते हैं।

0: जो आपको समझा सके कि तू ये कर,
1: बिल्कुल,
0: ये
1: अगर उस तरह
0: करेगा
1: की कोई चीज है आपके पास हो जाती है। और माइंडफुल सर्चिंग का भी एक ऑप्शन हमारे पास होता है, अगर अगर हम AI से बात करें, अगर हम चैट GPT यूज करते हैं,
0: हाँ
1: तो हमें उस चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर इंटरनेट को हम अच्छे से यूज करेंगे तो वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: और जब भी ऐसे डाउट में आए तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि किसी से बात कर लीजिए, और उसके बाद अगर आप कहीं पर ऑनलाइन सर्च भी करते हैं तो उस चीज को उनके साथ अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा निष्कर्ष हमारे पास आता है, बहुत अच्छा सोल्यूशन जो है उस पूरे थॉट का हमारे पास आता है, और ऐसे ही जो है चीजें धीरे धीरे पर आसान बन जाती है।

आपकी बातें सुनता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आपके सुझाव देखता हूं, उसी से मेरे विचारों की दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास

दोस्तों, इसी बीच हम देते हैं आपको एक जानकारी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत 1991 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे। यह भर्ती बिलासपुर डिवीजन के लिए है। अप्रेंटिस की ट्रेनिंग 1 साल के लिए होगी। अगर हम बात करें आवेदन शुरू होने की, तो इसके आवेदन शुरू 12 मई 2026 से होंगे और लास्ट डेट जो है वो है 11 जून 2026। और इसकी फीस की बात करें तो ये जो है निःशुल्क है। आपको इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो हम आपको इसकी वेबसाइट बता देते हैं। इसकी वेबसाइट है rrbappy.gov.in पर जाकर आप जो है जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में पूर्ण रूप से। अभी हम ले चलते हैं आपको अगले ट्रैक की ओर।

0: बिल्कुल जी, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आप सुन रहे थे यो पसंद कार्यक्रम जिसका नाम था यो वाणी, और मैं था आज आपके साथ आपका प्यारा सा रेडियो राहगीर रोहित, और आज मेरे साथ थी
1: जी हाँ दोस्तों, मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता। आज के प्रोग्राम की परिकल्पना और प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की। दीजिए हम दो रेडियो बडीज को इजाजत, फिर से मिलेंगे ऐसी ही प्यारी से शाम में। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सांसिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आपने सुना कार्यक्रम युव वाणी। शाम के 6 बज चुके हैं, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल।

0: एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सिंह मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सांसरी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है गुड इवनिंग जोधपुर कार्यक्रम का।

बीते हुए किस्सों की बात करते हैं, पर आज इस गुफ्तगू का रुख थोड़ा अपनी तरफ मोड़ते हैं। आजकल की इस तेज रफ्तार की जिंदगी में हम सभी किसी ना किसी कश्मकश से गुजर रहे हैं। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर आने तक हमारी जिंदगी मुसलसल भाग दौड़ में लगी रहती है। हम आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर पाने की इस कदर फिक्र करते हैं कि अक्सर उस रास्ते को भूल जाते हैं जो हमने कितनी हिम्मत से तय किया है। बिना किसी तकल्लुफ के अगर कहूँ तो हम ना अपनी छोटी छोटी कोशिशों को सराहना भूल गए हैं जो असल में हमें यहाँ तक लेकर आई है। तो आज की शाम किसी और से नहीं बल्कि खुद से राब्ता बनाए रखने के नाम। आज बातें उन जज्बातों की होंगी जिन्हें हम वक्त की कमी के चलते अनसुना कर देते हैं। चलिए इस खूबसूरत शाम को थोड़ा और मुकम्मल बनाते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन धुन के साथ। सुनिए आज की प्लेलिस्ट का ये पहला नगमा सिर्फ गुड इवनिंग जोधपुर पर।

नमस्कार, आदाब और बहुत सारा प्यार जोधपुर। जब शाम का ये हसीन वक्त शुरू होता है तो शहर का मिजाज अपने आप बदल जाता है। आप इस वक्त सुन रहे हैं गुड इवनिंग जोधपुर और इस आगाज में आपके साथ माइक्रोफोन पर मैं हूँ आपकी हमराही राधिका।

आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग जोधपुर और इस रूहानी संगीत के सफर में मैं हूं आपके साथ राधिका। अभी जो धुन हम सुन रहे थे उसमें एक अजीब सा असर था, है ना? संगीत की खूबसूरती यही है कि वो उन बातों को भी बयां कर देता है जिन्हें लफ्जों में ढालना मुश्किल होता है।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मंजिलें दूर लगने लगती हैं और हौसला थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, पर यकीन मानिए किसी बड़े मकाम तक पहुंचने से ज्यादा अहमियत इस बात की है कि आपने उस रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटाई।

आपकी वो रोजाना की कोशिशें, आपका वो रोज सुबह उठकर फिर से मैदान में उतरना, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। अगर इस वक्त आपके जहन में दिन भर की कोई रंजिश या थकान बाकी है तो उसे इसी संगीत के हवाले कर दीजिए। आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये हमारा अगला प्यारा सा गीत।

0: तेरा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: श्रोताओं, वक्त अपनी चाल चल रहा है और गुड इवनिंग जोधपुर के एक खास सफर में आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ में मैं हूँ आपके राधिका व्यास और सुनते हैं ये अगला गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कैसे ट्रिप पे अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा पौधे उगाइए पर्यावरण बचाइए
4: आज ही पधारे लालजी नर्सरी रानोजी का बाग खोखरिया बिरा मंडो
3: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए
5: लालजी नर्सरिया कुछ समय हरियाली में बिताओ
6: श्रोताओं अक्सर हम सुनते हैं कि जिंदगी खुशियों का नाम है पर मुझे लगता है कि जिंदगी असल में उस हौसले का नाम है जो हमें बुरे वक्त में मुस्कुराने की ताकत देता है। एक अजीब सी रिवायत बन गई है खुद को दूसरों से कंपेयर करने की पर आज इस फुर्सत के पल में खुद को दूसरों की नज़रों से देखना बंद कीजिए आप अपनी जिंदगी के खुद हीरो हैं। आइए इस शाम की गुफ्तगू में थोड़ी सी मिठास और घोलते हैं पेश है आपकी शाम को और भी हसीन बनाने के लिए ये अगली धन

और इसी बेहतरीन नगमे के साथ वक्त आ गया है कि हम इस सफर को यहाँ एक खूबसूरत अंजाम दें। आप जुड़े थे गुड इवनिंग जोधपुर के इस एक घंटे के सफर में अपनी दोस्त और होस्ट राधिका व्यास के साथ। आज की गुफ्तगु में हमें बातें की थोड़ी गहराई वाली ज़रूर थी, पर इनका मकसद सिर्फ आपको ये याद दिलाना था कि आप और आपकी मेहनत दोनों बहुत खास हैं। मैं राधिका व्यास इस अगले गीत के साथ लूंगी आपसे इजाज़त। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला विविध भारती मुंबई से।

फौजी साथियों के इस कार्यक्रम जयमाला में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारा नमन। जय हिंद साथियों। आज

0: इस गीत की रचना की थी समीर ने, एआर रहमान ने धुन बनाई थी। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह इस फिल्म से ये गीत था एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। अब आपको सुनवाते हैं भारतीय सेना गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत, गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर थे। अब आपको सुनवाते हैं ये गीत जिसे गाया है गुलाम अली ने, साथ ही संगीतबद्ध भी किया है मीर ताकी मीर ने। इस गीत को लिखा है शायराना फिल्म से ये गीत है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओं आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दोस्ताना का ये गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना तेरी कसम, इस फिल्म का अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे आरजी बर्मन का संगीत।
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन।

0: Nutrition, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर. जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी.
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं. वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया.
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर.
3: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का.

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का, फौजी साथियों का इस कार्यक्रम जयमाला में हार्दिक स्वागत है। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर है। निदा फाजली ने इस गीत को लिखा है, उषा खन्ना का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना एक नजर फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और अब आपको सुनवा रहे हैं खुदा गवाह इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: नुमाइश एल्बम से ये गीत था। इस गीत को गाया साथी संगीतबद्ध किया पंकज उदास ने। जफर गोरखपुरी ने इस गीत की रचना की थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। आइए अब आपको सुनवाते हैं, ये है प्रेम इस एल्बम का गीत। इस गीत के गायक कलाकार और संगीतकार मिलिंद इंगले हैं। श्याम अनुरागी का लिखा गीत है।

0: आज के हवा महल में आपको सुनवा रहे हैं प्रेमलता जैन की लिखी नाटिका चांद की किरण।
1: अरे तुमकी हो, कहाँ हो?
2: अरे यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं,
3: लगता है सब कहीं गए हैं।
2: नहीं नहीं, गए नहीं होंगे, यहीं होंगे। अच्छा ठहरो, मैं आवाज देता हूँ।
1: सरला, ओ सरला,
4: कौन है?
1: मैं हूँ, दीवार खोलो।
4: आती हूँ।
5: क्या बहुत देर से पुकार रहे थे, मुझे सुनाई ही नहीं दिया?
2: नहीं नहीं, अभी ही आए हैं, तो तुम शायद अंदर वाले रूम में थी।
5: हाँ, मुन्ने को सुला रही थी।
2: अच्छा छोड़ो, देखो तो, ये देखो कौन है।
3: नमस्ते भाभी जी।
5: नमस्ते भाई साहब।
2: भाई वाह, अजी नमस्ते नमस्ते तो हो गई, पर आपसी परिचय
5: परिचय करवाओ तो।
2: चलो सुनो, देखो ये है मेरा लंगोटिया यार प्रेमेंद। जब हम छोटे थे ना तो समझो एक प्राण और दो शरीर थे।
3: पर भाभी जी, इस प्राण को इस निर्मोही ने निकाल फेंका था।
5: वो क्यों?
3: क्योंकि मैं
2: क्योंकि व्योंकी छोड़, क्या फिर झगड़ेगा?
3: नहीं,
2: और सरला क्या बाहर ही खड़ा रखोगी?
5: अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी। आइए आइए, अंदर आइए।
2: चल भाई अंदर चल।
5: बैठिए भैया, आप भी बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ।
2: कहाँ जा रही हो?
5: कहीं नहीं, जरा चाय वाय ले आऊँ।
3: चाय का कष्ट मत कीजिए भाभी जी, बैठिए ना।
5: अरे वाह, इसमें कष्ट भला कैसा, ये तो सौभाग्य है। और फिर आपको तो मुँह दिखाई भी देनी है ना।
3: मुँह दिखाई? अच्छा अच्छा, समझा, मैं पहली बार मिला हूँ आपसे। वाह, क्या कहना है भाभी जी, आप तो बहुत बड़ी व्यंग्यकार हैं। आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे मुँह दिखाई देनी है आपको।
2: सुन लिया ना, ये प्रेमेंद्र भी कम नहीं। अच्छा सरला तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ रामू को।
5: रामू बाहर गया है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, अधिक समय नहीं लगेगा।
2: और सुना यार प्रेम, कामकाज कैसा चल रहा है?
3: कामकाज कैसा यार।

0: भाई मैं तो सरकार का फेथफुल सर्वेंट हूँ, गुजारे के लायक उसी से मिल जाता है बस। अमा तुम सुनाओ क्या ठाट है?
1: अपना भी ठीक ही चल रहा है भाई, जीवन गुजर ही रहा है। अच्छा तू एक बात बता, तू वहाँ ऑफिस में क्या कर रहा था?
0: भाई वहाँ एक लड़की काम करती है, मिस मित्रा, उसी से
1: मिलने गया था। यही ना, देख प्रेम तेरी याद बिल्कुल नहीं बदली, याद है ना इसी बात पे झगड़ा हुआ था?
0: रहा झक्की का झक्की। अबे पहले बात तो सुन ले पूरी।
1: अच्छा सुना
0: है? अरे भले मानस, पता है या नहीं परसों लोक नृत्य का कार्यक्रम है?
1: हाँ, पता है। तो भाई उससे और इस लड़की से क्या संबंध है?
0: संबंध ही तो है, डांस प्रोग्राम के टिकट लेने गया था उसके पास।
1: हाँ।
0: और कहीं मिल ही नहीं रहे थे।
1: अच्छा है छोड़। अरे सरला चाय ले आई?
2: हाँ चाय ले आई। देखो जरा वो टेबल पास कर दो ना।
1: अच्छा लो ये लो।
2: हाँ

0: देखो जरा वो टेबल पास कर दो ना।
1: अच्छा लो, ये लो।
0: हाँ लीजिए, चाय लीजिए।
2: वाह भाभी जी, कुछ ही मिनटों में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, लगता है आप बहुत सुखद गृहिणी हैं।
0: अपने मित्र महोदय से जरा पूछिए, इनकी दृष्टि में तो मैं बैड हाउस वाइफ हूँ।
2: क्यों बे कृष्ण, क्या ये बात ठीक है?
1: ना यार छोड़ो भी, क्या बात ले बैठे, ले ले और खा, लेके खा।
2: अरे अबे और लेना है?
1: हमारा बस बस कुछ नहीं, अब मैं जाऊंगा।
2: जाएगा?
1: हाँ
2: अभी इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर और बैठ।
1: नहीं नहीं कुछ काम है, अब तो मैं आता ही रहूंगा, परसों तो मिलेंगे ही।
2: परसों?
1: हाँ परसों। लीजिए भाभी जी।
0: क्या है?
1: परसों लोक नृत्य का शो है ना। हाँ, उसके हाँ। दो टिकट हैं।
2: देख भाई प्रेम, ये तो तूने अपने लिए खरीदे हैं ना, ये रहने दी, हमें जाना होगा तो हम और ले लेंगे।
0: हाँ भाई साहब, ये ठीक ही कह रहे हैं।
1: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मियाँ बीबी और दो बच्चे, चार टिकट लिए थे, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वैसे दो टिकट और मिल जाएंगे, लीजिए ना। और ये तो आपकी मुंह दिखाई है।
2: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, अबे टाल दे सस्ते में। अच्छा भाई सरला, ये टिकट ले लो, नहीं तो प्रेम बुरा मान जाएगा। और देखो वो रुपए ले आओ।
1: रुपए? अबे कैसी बातें कर रहा है तू, क्या रुपए देने के लिए मैंने टिकट दिए हैं?
2: वो तो मैं जानता हूँ भाई, पर भाई प्रेम मैं इस सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता हूँ कि मित्रों के बीच रुपए पैसे का संबंध नहीं होना चाहिए, मित्रता की बाधा बन जाता है रुपया। जाओ सरला रुपए ले आओ।
0: जी अच्छा।
1: यार मन खराब कर दिया तूने, भला कभी प्यार भी पैसों से तोला जाता है? कितने मन से टिकट दिए थे मैंने।
2: मैं जानता हूँ दोस्त, तेरी भावनाओं को मैं ठेस नहीं लगाना चाहता था,
1: पर क्या,
2: पर यही कि आज नहीं तो कल ये पैसा प्यार को तौल ही देता है। यार पैसा तो आदान प्रदान मांगता है ना। अच्छा खैर ये प्रसंग छोड़, आदरा गले तो लग जाए, कितने वर्षों के बाद मिला है।
1: तू बिल्कुल वही है, पहले थप्पड़ फिर प्यार, पर इस बार
0: इस बार क्या भाई साहब, लीजिए ले लीजिए रुपए,
1: जैसी इच्छा भाभी। अच्छा तो मैं चलूं भाभी जी।
0: नमस्ते भैया, कभी बच्चों वगैरह को लाइएगा।
1: हाँ जरूर लाऊंगा भाभी जी। अच्छा कृष्ण,
2: अच्छा अच्छा कुछ नहीं भाई, चल तुझे घर पर ड्रॉप कर दूं।
1: नहीं नहीं मुझे अभी बाहर जाना है।
2: तू वहीं सही, चल।
1: ओह अच्छा चल, तू ही जीता मैं हारा।

0: अब सो गया। सोना तो जैसे चाहता ही नहीं।
1: कौन नहीं सोना चाहता है?
0: यही मुन्ना, सोने का नाम नहीं और सारे दिन उधर। मैं तो तंग आ जाती हूँ।
1: तंग आ जाती हो? अरे भारतीय नारी का तो जीवन ही बच्चे हैं, वो तो कभी तंग नहीं आती।
0: लो और सुनो, इसमें भला भारतीय नारी की क्या बात है?
1: यही कि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं और वो तो बच्चों को छाती से चिपकाए रहती है, सुख में दुख में।
0: बस बस बस, मैं सब समझ गई। अच्छा एक काम करोगे?
1: काम? अजी तुम कहो तो जान भी हाजिर है।
0: बातें मत बनाओ। सुनो,
1: हाँ?
0: गीता और महेश तो बड़े हो गए हैं, उनका तो अब सहारा ही है। मीना और बिट्टू भी स्कूल चले जाते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो यही कि रमा और मुन्ना, उनमें से एक को तुम अपने साथ ऑफिस ले जाए।
1: क्या कहा, ऑफिस ले जाए?
0: मुझ में तो अभी हिम्मत नहीं रही कि इतना बोझ संभाल सकूं।
1: ऑफिस ले जाया करो, कमाल कर दिया तुमने सरला। अरे तुम अगर हिम्मत हारोगी तो ये बच्चे पलेंगे कैसे?
0: मैं क्या जानू, तुम पालना, तुम भी तो बाप हो इनके।
1: अच्छा भाई चलो, मैं ही पाल लूंगा, तुम खुश रहो। अच्छा अब तो सो जाओ, देखो सरला मुझे नींद आ रही है।
0: तो सो जाओ ना, मैं क्या रोक रही हूँ तुम्हें, मुझे जब नींद आएगी मैं भी सो जाऊंगी।
1: अच्छा अच्छा, गुड नाइट डार्लिंग।
0: नहीं नहीं, सुनते हो?
1: ओफो, क्या है?
0: मुझे नींद नहीं आएगी।
1: क्यों, क्या बात है जो नींद नहीं आएगी?
0: चिंता हो रही है।
1: कैसी चिंता?
0: गीता और महेश की फीसें देनी है।
1: तो दे देना।
0: पर दूंगी कहाँ से, यही तो समस्या है।
1: क्यों, रुपए तो उनके लिए अलग ही रखे थे ना।
0: 50 रुपए टिकटों के जो दिलवा दिए, आप तो कुछ सोचते ही नहीं। बोला क्या जरूरत थी टिकटों की? उफ, मेरा तो चिंता से बुरा हाल हो गया है, फीस देना भी बहुत जरूरी है।
1: क्यों चिंता करती हूँ सरला, सब ठीक हो जाएगा। और फिर टिकटों के रुपए तो देने ही थे ना, तुम ही कहो भला मुफ्त में टिकट ले लेता।
0: ओहो, तो मैं कब कहती हूँ कोई मुफ्त में टिकट ले लेते, टिकट लिए ही क्यों?
1: लिए ही क्यों, तो क्या मैं अपनी बेइज्जती करवा लेता? वो तो बच्चों के लिए टिकट ला सकता है और मैं तुम्हारे और अपने लिए दो टिकट नहीं ले सकता?
0: हाँ हाँ, नहीं ले सकते, पहले घर का खर्च।

0: या तो पूरा हो फिर कहीं।
1: फिर कुछ नहीं होगा सरला, तुम्हें तो घर चलाना आता ही नहीं। इतना रुपया कमाता हूँ पर न जाने तुम कहाँ फूंक देती हो।
0: फूंक देती हूँ? नहीं नहीं, मैं खा लेती हूँ।
1: कुछ तो करती ही हो सरला, प्रेम को ही देखो ना, मुझसे कम वेतन मिलता है पर कितनी शांति है उसे। खर्च और शौक दोनों पूरे करता है। बीबी सुघड़ है इसीलिए ना।
0: हाँ हाँ, मैं ही फूहड़ हूँ। ये नहीं सोचते कि उसके गृहस्थी छोटी है, कुल 4 प्राणी और यहाँ इतना बड़ा परिवार, उसके लिए नौकर भी जरूरी। घर की चिंताओं ने तोड़ डाला है मुझे तो। आखिर पुरुष होना, पल्ले झाड़कर अलग हो गए और दोष मेरे मत्थे मर गया।
1: अच्छा बाबा माफ करो, चलो दोष मेरा ही सही, अब सोने दो मुझे।
2: साहब
3: क्या है?
2: बाहर कोई प्रवीण साहब आपसे मिलने आए हैं।
1: अच्छा अच्छा, उन्हें शीघ्र अंदर भेज दो।
3: अरे प्रेम, आओ आओ आओ भाई आओ। है
2: क्या, उसी से मिलने आए हो?
4: हाँ कृष्ण, उसी से मिलने आया था और मिल भी लिया। यार मन आनंदित हो गया।
1: हाँ हाँ हाँ, आनंदित क्यों नहीं होगा, बचपन की आदत जो है।
4: अबे तो जलता क्यों है? उसने बड़े प्यार से 2 टिकट मेरे हाथ में थमाकर कहा।
1: क्या कहा?
4: आपको किसी भी समय किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए, आपके लिए काम करके मुझे आनंद मिलेगा।
1: अच्छा अच्छा, बहुत ठीक बहुत ठीक, मेरा भी मन आनंदित हो गया। अच्छा बता भाई,
4: हाँ
1: शाम का क्या प्रोग्राम है?
4: प्रोग्राम क्या, वही मिलेंगे?
1: नहीं भाई सुन, शाम को मैं और सरला तुम्हें घर से पिकअप करते हुए शो में चलेंगे, क्यों ठीक है ना?
4: हाँ हाँ, बहुत ठीक बहुत ठीक। भाभी जी का भी हमारे घर पदार्पण हो जाएगा।
1: तो भाई बात पक्की है? ठीक 5:45 बजे हम पहुंच रहे हैं तुम्हारे यहाँ।
4: ओके ओके ओके, ठीक 5:45 बजे।
1: हाँ भाई। अरे सरला, अरे कहाँ हो भाई, कहाँ चली गई?
5: ओहो, देर ना हो जाए कहीं।
1: रामू ये क्या है?
6: जी चाय।
1: अच्छा चाय को बाहर रख दो और देखो मैम साहब को जल्दी भेजो।
6: जी हाँ।
1: मैं चाय पीता हूँ, तू जरा जल्दी कर। सरला, अरे ओ सरला,
5: ओहो तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए, मैंने तो पहले ही फोन कर दिया था।
0: तैयार होने में कौन से युग लगते हैं, पर मुझे तो तैयार होना ही नहीं है।
1: क्या कहा? तैयार होना ही नहीं है? क्या कह रही हो तुम ये?
0: ठीक कह रही हूँ, मैं नहीं जा सकती। मुन्ने को तेज बुखार है, रो रहा है, चुप ही नहीं होता। तुम ही बताओ ना मुन्ने को छोड़।
1: मुन्ना मुन्ना, तुम्हारा सारा जीवन इसी में बीतेगा, मेरे साथ जाने को एक क्षण भी नहीं है तुम्हारे पास।
0: कैसी बातें कर रहे हो जी, तुम्हारे लिए तो जीवन का हर क्षण प्रस्तुत है। परंतु
1: देखो देखो सरला, परंतु कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है। जाओ 10 मिनट में तैयार होकर चली जाओ।
0: ओहो तुम कुछ समझते क्यों नहीं, मैं अगर जा सकती तो क्या नहीं जाती? मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर भला कैसे जाऊं?
1: मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर कैसे जाऊं? ओहो गीता संभाल लेगी ना उसे, अभी डॉक्टर साहब को फोन कर देता हूँ, वो आके देख जाएंगे।
0: आकर देख जाएंगे? फीस के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? कल ही शाह बनकर 50 रुपए फूंक दिए।
1: क्या कहा? फूंक दिए? हे भगवान, ये क्या जाहिल और गमार मेरे भाग में लिखी थी। मुन्ना 20 रुपए जिंदगी दू भर हो गई है, अब तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
0: घर छोड़कर चले जाओगे? तुम क्यों जाओगे, मैं ही चली जाती हूँ। अनपढ़ जाहिल कुमार का तुम्हारे जैसे साहब के घर में भला क्या काम है? शादी से पहले मैं ही चांद की किरण और फूल सी सुकुमारी थी ना।
1: हाँ हाँ ठीक ही बात है, तब तुम कुछ और ही थी, तुम तब मेरे साथ चांद तक जाने को तैयार रहती थी, और अब?
0: हाँ, अब क्या हो गया है?
1: अब क्या नहीं हुआ है, अब तुम्हें मेरे मान और सम्मान का भी कुछ ख्याल नहीं है। तुम ही बोलो प्रेम क्या कहेगा, उसकी मिसेस क्या कहेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम अपने बच्चों को लेकर बैठो, मुन्ने को सुलाओ, मैं जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा इस नगर में।
4: आओ आओ कृष्ण, हमारा देर हो गई।
1: हाँ देर हो गई।
4: हाँ भाभी जी कहाँ है, क्या गाड़ी में बैठी है?
1: नहीं गाड़ी में नहीं,
4: हाँ
1: घर में बैठी है।
4: यार क्या बात है, झगड़ा करके आया क्या? अरे बात तो बता।
1: बात बात कुछ नहीं भाई,
4: हाँ
1: मुन्ने को बुखार था तो बस सरला नहीं आ सकी।
4: अरे मुन्ने को बुखार है तो तू आया क्यों? अबे फोन कर देता। अजी सुनती हो?
7: क्या है? नमस्ते भाई साहब, भाभी जी कहाँ है?
1: वो नहीं आ सकी है, छोटा बच्चा बीमार है।
7: है भाई साहब, तो आपने फोन कर दिया होता, हम वहाँ आ जाते, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पहले नमस्ते तो स्वीकार कीजिए। भाई बाप प्रेम, तू तो सदैव भाग्यवान रहा है, भाभी जी प्रशंसा के योग्य हैं।
4: कौन भाग्यवान है ये तू अच्छी तरह जानता है, कमला से अधिक सुंदर गुणवती पढ़ी लिखी हमारी भाभी जी, ऊंचे पद की नौकरी, सुंदर बच्चे, अमा किस वस्तु का भाव है तुम्हें?
7: ये बातें तो फिर होती रहेंगी, चलिए घर चलिए, बेचारी भाभी जी अकेली परेशान हो रही होंगी। प्रोग्राम का क्या, वो तो होते ही रहते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हैं, जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, सरला सब संभाल लेती है।
4: सब संभाल लेती है ये बात अलग है, पर तुम्हें तो हर कार्य में उनका साथ देना चाहिए।
7: ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, पति के पूर्ण सहयोग के बिना

0: पत्नी टूट जाती है, उसका हृदय टूट जाता है।
1: ये सब ठीक है, मैं सब समझता हूँ, पर क्या करूँ? हर रोज का काम, बीमारी, पैसे की चिंता, ये सब मिलकर दिमाग खराब कर देते हैं।
2: दिमाग तो खराब हो गए, पर भाई मेरे, ये सब तो पहले सोचने की बातें थी। अब इसका उपाय क्या है? जितने परिवार के प्राणी अधिक होंगे, उतनी अधिक परेशानियाँ, झगड़ा और खर्चा पड़ेगा।
1: पर इसका उपाय भी तो होगा प्रेम।
0: उपाय यही कि सब समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग ही है। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िए, एक दूसरे को दोषी न मानकर कर्तव्य और भावना में सामंजस्य रखिए।
2: हाँ दोस्त, ये ठीक कह रही हैं। जीवन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए।
1: कहता तो तू ठीक है।
2: हाँ।
1: वास्तव में मैं पलायन वृत्ति को अपनाता जा रहा था,
2: और यही विषाद का मूल कारण है। अच्छा चल, भाभी जी के पास चले।
1: नहीं नहीं चलो, तुम सबको शो में ड्रॉप करके मैं घर जाऊंगा, अपनी सरला के पास।
2: बहुत ठीक, यही है सामंजस्य की भावना, पति और पत्नी का पूर्ण सहयोग।

तो ये थी नाटिका चांद की किरण, लेखिका प्रेमलता जैन, निर्देशन किया जनार्दन राय ने। आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गीत मोहित चौहान की आवाज में न्यूयॉर्क फिल्म से। संदीप श्रीवास्तव ने इस गीत को लिखा, प्रीतम ने संगीतबद्ध किया।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन
5: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
6: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि

0: मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

मे और मिसेस खन्ना इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सुजेन डिमेलो की आवाजों में। साजिद वाजिद का संगीत था।

डेली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज, श्रद्धा पंडित और साथियों के स्वरों में। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था, एआर रहमान ने संगीत पर किया था। और अब कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। मोहित चौहान की आवाज में लव आजकल फिल्म का गीत इरशाद कामिल ने इस गीत की रचना की है, प्रीतम ने संगीतबद्ध किया।

0: केके और याशिता की आवाजों में ऑल द बेस्ट इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कुमार ने इस गीत को लिखा था, संगीत पर किया था प्रीतम ने।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
4: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे आ देखी जरा। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और शान की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल थे, धुन बनाई थी प्रीतम ने।

0: हमसे है मुकाबला इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज, साथ ही एस जानकी की आवाज भी है। पीके मिश्रा ने इस गीत को लिखा है, एआर रहमान ने धुन बनाई है।
1: मैं गोरी छोरी

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की।

0: एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
3: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
4: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
2: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन, गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के

0: तीन टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के

0: बादल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: निजी श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और इस कार्यक्रम आपके लिए में ये पहली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म आशा से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बनाया संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन
2: लाया। इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे चश्मी बद्दूर फिल्म का गीत, येशुदास हेमंती शुक्ला की आवाजों में। इंदु जैन ने इस गीत को लिखा था और धुन बनाई थी राज कमल ने। अब आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत जानी दुश्मन फिल्म से, आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। वर्मा मलिक इसके रचनाकार हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है?
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सिर्फ बीच में क्यों रोक दी?
1: एक दूजे के लिए इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत है।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। इंग्लिश।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में कौंध गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा है।

आज के फनकार में आज का सफर हम तय करेंगे एक सशक्त अभिनेता राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ।

अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को आपने एनएसडी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहां आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पराशर, मदन पुरी और ओम शिव पुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे तीन सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया है।

सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होकर बीआर चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने अभिनय किया।

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास के, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीनो रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

फिल्मों में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था, वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसकी सफलता राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने एक नेगेटिव किरदार

राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलके। जन्म

प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद NSD से थे। आप स्वयं पंजाबी कला मंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और NSD से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने NSD में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलका जी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। NSD करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप NSD की रेपेट्री का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रेपेट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारुन जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह सम्पन्न हुआ।

फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सोहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहां भी उम्मीद दगा दे गई पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए जिसमें जितेंद्र रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इन

प्रेम गीत, ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात, दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेम साहब, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविजन पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया, 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया, वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर आपने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया है। आप अपनी कला से सेल्यूलाइट पर हमेशा

आपने सुना आज का आज के फनकार, जो कि राज बब्बर पर केंद्रित था। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और प्रस्तुति थी रमेश गोखले की।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आए जो वो जिंदगी में तो खुशियों की पालकी पर बैठ मन चल पड़ा था एक अनजानी दुनिया में। उनका दामन थाम खुशियों के गुल्लक भरते रहे, उनकी प्यार भरे निगाहों ने फूलों की बारिश की, अधरों ने लिख दी जिंदगी की नई वसीयत और फिर जिंदगी ख्वाब बन गई।

हंसने की चाहत कई बार जिंदगी को आंसुओं का सैलाब बना देती है। आंखों की नदी को मुस्कुराहट से ढक लेते हैं हम। दिल में खामोशियों का जहां होता है, चेहरा यूं ही कुछ बोलता रहता है, क्योंकि बोलना इंसान की फितरत है। भीड़ में रहते हुए भी हम एकाकी होते हैं, हंसने की चाहत में हम आंखों में नदी भर लेते हैं।

हमदर्द, हम साया, हम सफर का जुदा होना, जिंदगी जैसे अंधेरे से घिर जाती है। जाने वाला चला जाता है दूर, कहीं दूर, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल अपने भीतर उम्मीद का दिया जलाए रखता है कि शायद वो आएगा। टूट कर भी जीने का हौसला पा लेता है दिल। कुछ अजीब है ये दिल, अजीब है ये जिंदगी।

वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें मिलती है सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत कभी स्वीकारोक्ति की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत में जलकर भी अपनी और उसकी राहें रोशन कर लेते हैं। हर किसी के हिस्से में नहीं आती सच्ची मोहब्बत। कुछ लोग मोहब्बत की राहों में चलते हुए भटक जाते हैं। वे नहीं समझ पाते मोहब्बत की गहराई। ऐसे में तन्हाई मुस्कान बनकर उनका साथ निभाती है।

हमारे मन में यादों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी यादें, कुछ खुशगवार यादें। कुछ दर्द भरी यादों की लहरों से हमारा मन चोटिल होता रहता है, कुछ दर्दीली यादें हमें सहलाती भी हैं, हमें सिखाती भी हैं, कुछ प्यारी यादें हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, श्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।